FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि तदनुसार 17 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है।

0: शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं संत एकनाथ के विचार।
2: एकनाथ महाराज पैठण में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। एक दिन उसने सोचा कि संत जी को क्रोध कभी नहीं आता, आज मैं इन्हें क्रोध दिलाकर ही रहूंगा। एकनाथ जी स्नान करके वापस आ रहे थे तो उसने उन पर थूक दिया। संत एकनाथ तुरंत दूसरी बार स्नान करने चले गए। फिर उस दुष्ट ने उन पर थूका, किंतु महाराज क्रोधित न हुए। वे गोदावरी से कहने लगे, माँ तेरी बड़ी कृपा है, तू मुझे बार बार स्नान के लिए बुला रही है। वो व्यक्ति चाहे जितनी दुष्टता करता रहे, लेकिन मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति ने उन पर 108 बार थूका और उन्होंने 108 बार स्नान किया। अंत में वो लज्जित हुआ और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ने कहा, क्षमा की कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे कारण ही तो मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। शांति उसी की बनी रह सकती है जिसे क्षमा करना आता हो। जिसमें सहनशीलता हो वही संत बन सकता है। जो व्यक्ति अतिशय विपत्ति को भी ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को सुखी और संतुष्ट नहीं देख सकते। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। सभी देहधारियों के प्रति सुहृद भाव, सरल स्वभाव और विनय, तितिक्षा, करुणा, ये सब शांति प्राप्त के उपाय हैं। संत पुरुष समाज के हितार्थ सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। शांति प्राप्ति के लिए आवश्यक है क्रोध का त्याग। क्रोध को जीतने में जितना सहायक मौन है उतनी कोई और वस्तु नहीं। मौन से ही शांति प्राप्त होती है। अधिक बोलना अशांति को जन्म देता है। परंतु शांति समाज में रहकर ही प्राप्त की जाए। सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाने पर शांति तो मिल जाएगी। समाज के नियमों बंधनों में रहकर मनुष्यों के राग द्वेष के बीच यदि शांति प्राप्त की जा सके तो वही सच्ची शांति है। मानव सृष्टि करुणा और शांति के लिए है। कोई किसी को भी अनुग्रहित नहीं करता। विश्व भर में यदि कुछ कर सकती है तो वो है शांति, जो प्राणी मात्र में समदृष्टि रखती है। जो शांति प्रिय है उसका चित्त शुद्ध होता है और उसका कार्य सहज ही परमात्मा को अर्पण हो जाता है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे संत एकनाथ के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
1: ही देवताओं से पूजित अग्रगण्य मंगल मूर्ति मनवांछित फल देने वाले सुख की वर्षा करने वाले सिद्धि विनायक भगवान गणपति की आराधना करते हैं।

भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिन जिन को नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।

तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है, अब आ भी जाओ कहना करके कोई बहाना। मुझे गम नहीं है इसका कि ये दुनिया रूठ जाए, मेरे ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम ना रूठ जाना। मुझे रास आ गया तेरे दर पर सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना।

जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में, नहीं सरलता आई, वो चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने।

ये जीवन व्यर्थ गया इतना, कुछ आया अभी तक हाथ नहीं। कट जाए तुरंत तो उत्तम हो, चरणों में झुका अगर माथ नहीं। किसके हम साथ रहें जग में रहते, जब मोहन साथ नहीं। किस हेतु जिए इस जीवन में, मिलते जब जीवन नाथ नहीं।

कार्यक्रम आराधना में आज आपने सुने हरिओम शरण, लता मंगेशकर, सोनू निगम, अनूप जलोटा और साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ।

राजा मानस मानने से इनकार कर दिया और उनकी झांसी को हड़पना चाहा। तब रानी ने गरज कर कहा था, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। फिर क्या था, मेरठ से भड़की क्रांति की आग झांसी तक पहुंची। रानी ने महिलाओं और पुरुषों की एक फौज खड़ी की और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। जब वो झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुंची तो 17 जून 1858 को कोटा की सराय में अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पीठ पर अपने छोटे बच्चे को बांधकर दोनों हाथों में तलवार लिए रानी भूखे शेर की तरह फिरंगियों पर टूट पड़ी और लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गई। जनरल यूरोज ने भी उनकी वीरता को सलाम करते हुए कहा था कि क्रांतिकारियों में अगर कोई एकमात्र मर्द था तो वो थी झांसी की रानी। साल 1885 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जहाज के जरिए न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंची थी। दरअसल अमेरिका की आज़ादी के 100 साल पूरे होने की खुशी और दोनों देशों की दोस्ती के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने यह खूबसूरत स्टैच्यू अमेरिका को तोहफे में दिया था। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ने डिज़ाइन किया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब ये मूर्ति 17 जून को न्यूयॉर्क पहुंची तो ये खड़ी नहीं थी बल्कि 350 टुकड़ों में 214 बड़े बक्सों के अंदर बंद थी, जिन्हें बाद में जोड़कर खड़ा किया गया। आज ये प्रतिमा पूरी दुनिया के लिए आज़ादी और दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। साल 1928 में आज ही के दिन आसमान को अपनी मुट्ठी में करने वाली अमेलिया एयरहार्ट ने इतिहास बनाया। वो अटलांटिक महासागर को हवाई जहाज से पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उस जमाने में जब औरतों को गाड़ी चलाने की भी आज़ादी नहीं थी, अमेलिया ने घने बादलों और तूफानी समंदर के ऊपर से करीब 21 घंटे का बेहद खतरनाक सफर तय किया और कनाडा से उड़ान भरकर सीधे ब्रिटेन में लैंड किया। इस ऐतिहासिक उड़ान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि महिलाओं के हौसले के आगे आसमान भी छोटा है। साल 1703 में आज ही के दिन भारत के इतिहास के सबसे अजेय और पराक्रमी योद्धाओं में से एक मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का भी जन्म हुआ था। जी हाँ, ये वही बाजीराव हैं जिन्होंने अपने जीवन में 41 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और दुश्मनों के खिलाफ एक भी युद्ध नहीं हारा। छत्रपति शाहू जी महाराज के इस वीर पेशवा ने अपनी बिजली जैसी फुर्तीली गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों और निजामों की नाक में दम कर दिया था। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की रक्षा के लिए वो जिस तेजी से पहुंचे थे, उसकी मिसाल आज भी सैन्य इतिहास में दी जाती है। आज ही के दिन का नाता है दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल से। दरअसल साल 1631 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल का मध्य प्रदेश के बहरानपुर में निधन हुआ था। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मुमताज के जाने के गम में शाहजहां इतने टूट गए थे कि इतिहास के मुताबिक उनके सिर और दाढ़ी के बाल रातों रात सफ़ेद हो गए थे। इस बेपनाह मोहब्बत की याद में शाहजहां ने आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज पूरी दुनिया में प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। आज का दिन हमारी इस धरती के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरी दुनिया मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मना रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत साल 1995 में की थी ताकि लोगों को उपजाऊ जमीन के बंजर होने और पानी की कमी के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके। इंसानी गलतियों और जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी हरी भरी धरती धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलती जा रही है और सूखा हमारे जीवन को खा रहा है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि अगर हमने पेड़ नहीं लगाए, पानी नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ सूखी मिट्टी मिलेगी। तो आइए आज संकल्प लें, धरती को बंजर होने से बचाएंगे, पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को खुशहाल बनाएंगे। और 17 जून 1961 का दिन भारतीय विमान इतिहास का वो स्वर्णिम क्षण है जब भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक और पहला कदम बढ़ाया, क्योंकि इसी दिन विंग कमांडर
सुरंजन दास के कुशल नेतृत्व और कप्तानी में भारत के पहले स्वदेशी

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूं सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 17 जून। आइए डालते हैं एक नज़र आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। साल 1858 में आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1857 में जब अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और डलहौजी की हड़प नीति के खिलाफ देश का गुस्सा भड़का तो इतिहास का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को

फाइटर जेट HF-24 मारुत ने बेंगलुरु के आसमान में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और मशहूर जर्मन एरियोस्पेस इंजीनियर कूट टैंक द्वारा डिजाइन किए गए इस लड़ाकू विमान की पहली उड़ान ने भारत को लड़ाकू जेट विकसित करने वाला एशिया का पहला देश बना दिया था। अपनी इस ऐतिहासिक उड़ान के बाद मारुत ने भारतीय वायुसेना में शामिल होकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, विशेष रूप से लोंगेवाला की लड़ाई में अपनी अचूक मारक क्षमता और वीरता का लोहा मनवाया, जिसने आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं सकारात्मक रखें दृष्टिकोण विषय पर कार्यक्रम विविधा। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशाधारा तय करता है। छोटी छोटी घटनाओं में दृष्टिभेद से ही हमारे देखने के नज़रिए में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे अगर शरबत से भरा हुआ आधा गिलास है तो वो किसी के लिए आधा खाली, जबकि किसी और के लिए वो आधा गिलास भरा हुआ है। जिसे वो शरबत नहीं चाहिए उसके लिए वो आधा भरा हुआ, और जिसे उस शरबत की प्यास है उसके लिए वो गिलास आधा खाली है, यानी कि पूरा भरा नहीं है। गिलास को आधा भरा हुआ कहो या आधा खाली, दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन इसमें दृष्टिकोण का फर्क है और हमारी इच्छाओं का भी। जिस व्यक्ति ने गिलास को शरबत से आधा भरा हुआ समझा उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था, और जिस व्यक्ति ने उस शरबत के गिलास को आधा खाली समझा उसका दृष्टिकोण नकारात्मक। यानी नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का ध्यान हमेशा अभाव या कमी की ओर रहता है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का ध्यान हमेशा भाव की ओर रहता है। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन अगर हमारा चिंतन गुणों की ओर केंद्रित रहे तो उसके फायदे के रूप में हमें शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके विपरीत निराशावादी और अवगुणवादी मनुष्य अपने चारों ओर अभावों और दोषों के दर्शन करते रहते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अभाव को भाव, विषाद को हर्ष तथा दुख को सुख में बदलने की कला जानता है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक और सफल होता है। दुखी मनुष्य अपनी कल्पनाओं के सहारे छोटे से दुख को भी बहुत बड़ा रूप दे देता है। वो स्वयं को संसार का सबसे दुखी और अभागा व्यक्ति भी समझने लगता है, पर ये सब मात्र भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि उससे भी अधिक दुखी और समस्याग्रस्त लोगों से यह संसार भरा हुआ है। वास्तव में सुख और दुख दोनों ही सीमाहीन हैं, यानी इनकी कोई सीमा नहीं। ऐसी स्थिति में अगर हम स्वयं को घोर दुखी और अभागा समझने लगें तो हमें इसके नए नए कारण मिलते ही चले जाते हैं। जैसे रोगी मनुष्य रोग से भी अधिक उसकी कल्पना व चिंता के भार से रोगी होता रहता है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति उलझनों और समस्याओं की पुनः पुनः स्मृति से और अधिक दुखी होने लगता है। एक सामान्य प्रवृत्ति ये है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को अधिक दुखी समझता है। इस मनोवृत्ति में सुधार और परिष्कार करना है। दूर से पर्वत मनोरम प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके निकट जाने पर उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। इसी तरह दूर से ढोल बजने की आवाज आने पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पास जाने पर ढोल के तेज स्वर के कारण मन बेचैन होने लगता है। कुछ लोग अपने परिवार के वातावरण, व्यवसाय और नौकरी से व्यर्थ ही असंतुष्ट और दुखी प्रतीत होते हैं। प्रायः उन्हें दूसरों के परिवारों में, व्यवसाय में, नौकरी में अधिक सुख, शांति, वैभव, उन्नति के दर्शन होते हैं, पर जब वे उनकी अतरंग स्थिति से परिचित होते हैं तो स्वयं के अज्ञान पर ही हंसने लगते हैं। दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने, उनके जैसा पाने यानी कि देखा देखी करने की ये मनोवृत्ति व्यक्ति को सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनाकर छोड़ देती है, जो ना सही सोच सकता है और ना ही सही निर्णय ले सकता है और ना ही सही समय पर प्रतिकूल हवाओं से स्वयं को बचा सकता है। ये देखा देखी की मानसिकता उसे ना प्रेरक संदेश दे पाती है और ना ही उचित निर्णय और ऊंचा आदर्श बनने देती है। इन जटिल और विषम स्थितियों में हमारी आध्यात्मिक साधना और उपासना ही हमारे सोए हुए मनोबल को, आत्मबल को जगा सकती है और उसी से दुख और भय की ग्रंथियां नष्ट हो सकती हैं। ऐसा होने पर ही हम स्वयं को सुखी और सौभाग्यशाली महसूस कर सकते हैं और फिर वैसे में स्वयं ही नए नए अवसर हमको मिलते चले जाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूट

0: सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।

आज का प्रसंग दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। सुनेगा मानसिक स्वास्थ्य की ना करें अनदेखी विषय पर चर्चा। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जागरूकता से रोकथाम विषय पर डॉक्टर वीना तेजन असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से दीपिका पंत की भेंट वार्ता। दिन में 1:30 पर आप सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 2:30 पर होंगी खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा की वार्ता। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा हुनर को बनाए रोजगार। इसी कार्यक्रम में आज हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रश्न मंच, और इस कार्यक्रम के प्रतिभागी होंगे काजल बिस्ट, प्रवील सुयाल, प्रीति चौहान और अंकिता उपाध्याय। शाम 5:45 पर आपसे मुलाकात होती है कार्यक्रम उत्तरायण में। चर्चा होगी मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनेगा योग से जोड़ों को कैसे स्वस्थ रखें विषय पर भेंट वार्ता। ग्राम जगत, हमारे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं अपना एक कार्यक्रम 7:00, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में तिमिल की खेती। और आज की सलाह में आज आप सुनेंगे हल्दी व अदरक की खेती से आए अर्जन। रात्रि 8:00 आज आप सुनेंगे लोक गाथा भनारी नैद का दूसरा भाग। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का राग पटदीप में गाया ख्याल। लोकगीतों के कार्यक्रमों में लोक मंजरी आप सुनते हैं 7:30 पर, लोक सुर पूर्वाहन 11:30 पर, और उत्तराखंड के लोकगीत दिन में 2:00। इसके अलावा शैल स्वर सुनेगा 5:05 पर। श्रोताओं, गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में सबरंग आप सुनते हैं 10:05 पर, सुगम संगीत दिन में 1:15 पर और रात्रि 10:00। कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में 6:41 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। 10:35 पर सुरबहार। 12:00 मेरी पसंद। 11:00 सैनिकों के लिए। 2:45 पर एक ही फनकार। अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्मी नगमे। 7:40 और रात्रि 10:30 फिल्म संगीत, और रात्रि 9:15 इंद्रधनुष। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने

आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भले भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायिका थी शोभना राव, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन पर उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में सहमति। जल घटक की 90% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। नई टिहरी स्थित केंद्रीय विद्यालय को जल्द मिलेगा अत्याधुनिक नया भवन। जुलाई अगस्त तक

0: नए परिसर में स्थानांतरण की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नरेंद्र नगर में रन फॉर योगा का आयोजन, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का दिया गया संदेश। और देहरादून में 29 जून को रोजगार मेले का आयोजन, 50 से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर। और अब समाचार विस्तार से। यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण से जुड़ी वर्षों से लंबित किसाव बहुउद्देश्य बांध परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के जल घटक की लागत का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% व्यय 6 सहभागी राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार संवाद और सहमति के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की लंबी समय से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंग यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद 4 लोगों के घायल होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में 4 निहंग यात्रियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि 4 धाम यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की भी अपील की है।
1: जनपद चमोली के कर्णप्रयाग कस्बे में कुछ स्थानीय लोगों और निहंगों के एक समूह के बीच में पार्किंग के विवाद को लेकर आपसी झगड़े में चली गई और जिसमें निहंगों के द्वारा तलवारों का प्रयोग किया गया, जिसमें वहां के एक व्यक्ति प्रकाश रावत के सिर में चोट आई और उसके बचाव में आए 3 अन्य लोग भी घायल हुए और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। देश भर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यात्रा पूर्ण रूप से सामान्य, सुरक्षित और निर्बाध रूप से चल रही है। किसी प्रकार का कोई तनाव जनपद में या आसपास के क्षेत्रों में नहीं है।
0: इस बीच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आपसी सद्भाव, अनुशासन और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। टिहरी जिले के नई टिहरी स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए विद्यालय भवन की सौगात मिलने जा रही है। विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जुलाई अगस्त तक विद्यालय को नए परिसर में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि शिक्षा बच्चों के भविष्य की आधारशिला है और नए विद्यालय भवन के निर्माण से शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
2: एजुकेशन भविष्य के लिए यूथ के सबसे इम्पोर्टेंट है और अब हमारा जो सेंट्रल स्कूल के एवी टिहरी है उसकी बिल्डिंग काफी लंबे के समय के बाद जो है पूरी बन के तैयार हो गई है और अभी जुलाई अगस्त में शिफ्टिंग भी हो जाएगी। तब तक वैकल्पिक टेम्परेरी व्यवस्था में केवी चलता था, परंतु अब उसकी एक नई बिल्डिंग विद अ गुड प्लेग्राउंड बन गई है, तो मुझे लगता है कि एक तो यहाँ पे एडमिशन की संख्या भी काफी बढ़ेगी, जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पे एडमिशन भी लेंगे।
0: केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्र थपलियाल ने बताया कि नए परिसर में आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल गतिविधियों के लिए इंडोर और आउटडोर मैदान सहित विभिन्न सुविधाएं विकसित की गई है, जिससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण हेतु 1.672 हेक्टेयर भूमि आंचल डेयरी के समीप प्रदान की गई थी। उसमें भवन का निर्माण वर्ष 2024 से शुरू हुआ था और उसकी जो शिलान्यास कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आवासीय माध्यम से 20 फरवरी 2024 को किया गया। उसकी जो कुल लागत है वो 42,92,81,000 रूपए की लागत से ये भवन तैयार हो रहा है, जो की 2 सेक्शन विद्यालय है, मतलब पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक उसमें प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन विद्यालय होंगे, जिसमें कि लगभग 1,000+ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेंगे। ये जो विद्यालय भवन तैयार हो रहा है इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत कल नरेंद्र नगर में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने

0: के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, करो योग, रहो निरोग केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य रहता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद ने कहा कि रन फॉर योगा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को योग के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करना है।
1: हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग कितने अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी में एक रन फॉर योगा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया आज। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को योग के बारे में जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग योग को अपनाएं, अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें।
0: राजधानी देहरादून स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगामी 29 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जहां कुल 85 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार 12,300 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन प्रदान किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि फार्मा, बायोमेडिसिन, प्रयोगशाला, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेल्स और तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे। अल्मोड़ा में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय अतिथि गृह आवास योजना के अंतर्गत जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्रकाश सिंह खत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवेदकों को पारंपरिक पहाड़ी शैली में होमस्टे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2: वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत जिनके द्वारा आवेदन किया गया था उनका एक चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग की गई है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से उनको यह भी निर्देशित किया गया है कि उनके जो आवेदन है उसमें वो अच्छे पहाड़ी शैली के घरों को प्राथमिकता दें। होटल मैनेजमेंट और RBI के हेल्प से उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा जब उनका लोन सेंक्शन हो जाएगा, जिसमें होटल संबंधी सारे जो फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, इन सब संबंधी जानकारी दी जाएगी।
0: चिलियानोला निवासी आवेदक हुकुम सिंह अधिकारी ने कहा कि सरकार पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रही है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मोदी ने सबके लिए मांगा समता का हक, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है, G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक साझेदारी का नया मॉडल पेश किया। किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को हरी झंडी, उत्तराखंड को मिली सौगात। दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, 660 मेगावाट क्षमता की किसाऊ जल विद्युत परियोजना का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में निकाला गया समाधान। ट्रैकिंग ट्रक्शन होमस्टे योजना की अनुदान राशि में बढ़ोतरी, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला खबर में लिखता है, होमस्टे में 6 नए कमरों के निर्माण के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे। और टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक प्रतिबंध, दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, 21 जून को होने वाली NEET UG परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना के क्रियान्वयन पर उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में सहमति, जलघटक की 90% लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। नई टिहरी स्थित केंद्रीय विद्यालय को जल्द मिलेगा अत्याधुनिक नया भवन, जुलाई अगस्त तक नए परिसर में स्थानांतरण की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नरेंद्र नगर में रन फॉर योगा का आयोजन, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का दिया गया संदेश। और देहरादून में 29 जून को रोजगार मेले का आयोजन, 85 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कमलेश कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत, और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इनकी गाय

माशा ककड़ खेजाए चिर अरे हुनी रोली भेट हीरा ककड़ खेजाए चिर हुनी रोली भेट हीरा ककड़ खेजाए चिर अरे मिसु जे रोलिस गड़ना दगड़ में जा रे हीर तिले धारू बोला हीरा ककड़ खेजाए चिर।

ककड़ खेजाए चीर तुए नौली बारी कोली हीरा ककड़ खेजाए चीर लिसु जेरो लिस गड़ना दगड़ में जरे हीर पतिले धारू बोला हीरा ककड़ खेजाए चीर लिसु जेरो लिस गड़ना दगड़ में जरे हीर पतिले धारू बोला हीरा ककड़ खेजाए चीर।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, और हम आपको आज सुनवा रहे हैं कमलेश कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें, बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हमारे आज के कलाकार हैं कमलेश कुमार।

0: बातों बातों मां रात कटी।
1: कार्यक्रम का समापन करते हैं, आइए कमलेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरिया। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी कमलेश कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। इसी के साथ हमारा आज का लोक मंजरी कार्यक्रम अभी यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. प्राइम मिनिस्टर

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग पट्टदीप में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी शशिकांत मूले ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की।

0: मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तीर्थयात्रा से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये यात्रा जुलाई में शुरू होगी। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस साल का विषय है चरागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत आज से झारखंड की राजधानी रांची में हो रही है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, हाजिर हैं हम आप सभी के फरमाइशी पत्रों और गीतों के साथ। सौम्या कांडपाल का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने कार्यक्रम में।

0: कार्यक्रम के आरंभ में आपने शान और अनुराधा की आवाज़ों में हंगामा फिल्म का एक गीत सुना। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की थी। राजनगर मधुबनी बिहार से थे कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र और रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग लखनऊ से थे मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम पलक और पंखुड़ी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से थे मंजीत सोनाली, सूर्यवंशी, कोमल मीनका, माधवी साध्वी, तन्मय और गुनगुन गुप्ता। इसी गीत के इंतज़ार में हमारे श्रोता थे मध्य प्रदेश एयरपोर्ट वंदना नगर इंदौर से देविका चौधरी, गणेश कार्तिक, वंदना मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग, ललिता नारायण खर्चे और संजना। इस गीत को सुनना चाहा था शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर ने। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता थे दिनेश काले, वंदना, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। इसी गीत को सुनना चाहा था यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश सुनीता मुस्कान और जितेंद्र मालाकार ने। और बिहार से हमारे श्रोता थे मुर्सद जहानाज, तलहत, साजिया, नाजिया, नूर और नूरी ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में लहू के दो रंग फिल्म का ये गीत। बप्पी लहरी का संगीत है और फारूक कैसर का गीत। पसंद हमारे सभी श्रोताओं की है। जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता, प्रीति, ऋतु, केशव और इनके परिवारजन। इस गीत को सुनना चाहा है सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और चारवी सांवले ने। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं शंकर, कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या और शिवम। कोटवा, नारायणपुर, बाबा पटी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा, निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। कोटवा रोड वाशी महाराष्ट्र से हैं मास्टर विथल, सुरोशे, सुषमा, परिधि और मायरा। पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। कुल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपिसानी और अफजल मलिक। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू। और इसी गीत को सुनना चाहा है चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक और इनके ढेर सारे साथियों ने।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कलंक फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में। ये गीत पसंद किया है पंडरखेड़ा से अनिल ओशा, प्राची अनुषी, धनश्री, प्राची और एकलव्य ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। करणवीर हाउस भटिंडा से

प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वरिंद्र, सिमरन, दमन और अभिजीत। नादिर गौतम नगर से हमारे श्रोता हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। बिहार कॉलोनी लोनी से हैं प्रकाश वीर राजपूत, कमलेश, अनुश्री प्रदीप, पिंकी प्रमिला प्रदीप, लालचंद्र और नरेंद्र कुमार राम। इसी गीत को सुनना चाहा है वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण खर्चे, ललिता गणेश, संजना परी, मालती स्वाति प्रयाग, देव और प्रभाकर खर्चे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर ठाकुर, अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल बजाज। इसी गीत को सुनना चाहा है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया ने। इसी गीत के इंतजार में राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश, सारवा, आशा, नीरज, अंजलि और इनके ढेर सारे साथी। छत्रपति संभाजीनगर, सूर्यवाड़ी, औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोर गांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, सुभाष और अंशुमन बोर गांवकर। और इसी गीत को सुनना चाहा है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा ने।

0: करते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और आरव अर्पिता, जालना जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई राजे जाधव, साक्षिताई वंचित व्याल, आरेगांव प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सान्विक देशमुख, डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव, राधिका तुषार, डॉली अनिल, कबीर, पूजा और प्रभा, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खटके, रक्षा खटके, ललिता रंजना, गणेश कार्तिक, मालती और स्वाति प्रयाग चौधरी, सरगुजा मैनपेट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन सैफुद्दीन, वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्हा आसमा और कुमारी डब्लू आसमा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवीन और पप्पी भाटिया, मेहरनगर उमरखे महाराष्ट्र से अभिजीत कुआंकर राही, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश कुआंकर, प्रणीता अर्जुन, वैशाली शैली, सुमित और कुमारी ध्वनि परी कुआंकर और बीच शहर से प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप और केशव पटेल। ये हमारी इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं घरौंदा फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं भूपेंद्र और रूना लैला ने।

0: और गीत को संगीत दिया है जयदेव ने।
1: दीवाना शहर में
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

0: रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश बंटी, राजेश कुमार, रूबी एकता भारती, रचना ओमवती भारती, रौनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और पृथव सिंह, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, स्वाति प्रयाग, परी और शुभांशु, महाराष्ट्र दरियारपुर भाबली से गजानन येले, नवदीप, बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, फुटानी चौक नरहन स्टेट से उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बीबी आराध्या, लालू, गुंजन, अमित और सुमित, राज पैलेस माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन, मुन्ना पिंकी, रितेश कृष्णा, पीहू और इनके परिवारजन, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू वसीम, याकूब यूसुफ, इमरान इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आबिदा तिवारी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, सुंदरखेड़ा राजमाता नगर बुलढाणा से नरेंद्र, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार, और पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र, वरिंद्र, सिमरन और एकता। तो आइए

हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं कालिया फिल्म का ये गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोंसले की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कबीर सिंह फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है विशाल मिश्रा ने, संगीत है विशाल मिश्रा का और ये गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। सीतामंडी बिहार से हैं अकरम हुसैन, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम शमीम, अमन अकरम, ममता रानी, पूनम कुमारी और आसिफ खान इस गीत के को पसंद किया है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्राजक्ता, प्रांजलि सोहम, सदानंद सुभाष, अंशुमन और ओवी ने, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और इनके ढेर सारे साथी, सहारनपुर से हैं इशिका सोनाली, सुरेश नारंग और

आशु नारंग। छत्तीसगढ़ भाटापारा छतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक और झावेंद्र कुमार। पथरिया से हमारे श्रोता हैं नरेन, कुसुम, प्रोनिका और उत्कर्ष। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से हैं विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूरत और इनके ढेर सारे साथी। और इसी गीत को सुनना चाहा है खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री, विजय वेद, रानी वेद, महिमा, नीतू और इनके ढेर सारे साथियों ने।

कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म के इस गीत को। ये गीत पसंद किया है जगदीश धाकर, रंजूबाई धाकर, युवराज और शिवांशी ने, हमारे ये सभी श्रोता हैं संघ ग्राम हिंगेड़ी से। छोटी बलिया से हैं अहमद भाई फूलवाले, जूही इकबाल, इमराना अहमद भाई फूलवाले, आसमा नौरीन फूलवाले,

आसमा परवीन, राबिया आशु और अहमद गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं। तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु खुराना। बीकानेर से हमारे श्रोता हैं नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल आभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दमाणी। श्रीरामपुर अविका आर्ट्स से हैं अशोक कुमार, अविका जीविका और सानु कुमार, और इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय, सरोचौक, अमरावती से कमरोला ठेकेदार और नसीम बेगम ने

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं हंगामा फिल्म का ये गीत। ऋचा शर्मा की आवाज में गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। पसंदकर्ता गांव हांडी खेड़ा सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। बीच शहर शास्त्री नगर से हैं किशन सपकाल, आशा सोनिया, साई राज, विशाल प्रशांत ढेकरे, वर्षा श्रद्धा और श्रावणी ढेकरे। डोर गांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल यादव, राधिका, रजनीश, मनीष, नीतीश, बेबी अनिष्का और तन्मय। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोध राज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश और सुमन। इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श ग्राम बठिना छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, काजल पूर्वी, हेजल राजेश और रेशमा साहू ने। छत्तीसगढ़ से हैं योगेशपुरी लक्ष्मी देवी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी भोपालगढ़। राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार और गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा है तिलक नगर दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला ने। यहीं से हैं श्रुति ओबेरॉय, किरण सिंह और सृष्टि।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात आप सभी के फरमाइशी नगमों और पत्रों के साथ। तब तक के लिए सौम्या काटपाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं पंकज उधास के गाए इस नगमे के साथ।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज मैं

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। आई कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई ये गजल।

0: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था। पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गुलाम अली की गाय इसी गजल के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरिद्वार में खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन ने रुड़की नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए फोस्टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षण और औषधि महिमानंद जोशी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिभागियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दी। इस अवसर पर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, कार्यस्थल और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने, खाद्य अपशिष्टों के उचित निस्तारण और भोजन तैयार करने में स्वच्छ जल के उपयोग के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने तथा परोसने के लिए अखबारी कागज का उपयोग न करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए।
1: ठेली रेडी वाले जो होते हैं, जो खाद्य सामग्री बेचते हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है FSSAI के द्वारा नेस्ले के सहयोग से, जिसमें सभी को फूड सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कैसे हैंडल करना है, खाना बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, परोसने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या साफ सफाई रखनी चाहिए और जो आप फूड आर्टिकल यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी दी जा रही है। और हमारे जिले में लगभग 750 लोगों को, स्ट्रीट वेंडरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जागरूकता के लिए ये कार्य किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने

0: ने देहरादून के राजपुर क्षेत्र में नागरिकों से मुलाकात कर संवाद किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के दौरान सेवा, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों, उपलब्धियों तथा विभिन्न जनहित कार्य योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है, जिससे आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। इस दौरान उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने सभी विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए और विकसित भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय की ओर से कल उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बैंक अधिकारी, कर्मचारी तथा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक शरद खंडेलवाल ने कहा कि रक्तदान एक महान दान है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है, इसलिए समाज से अधिक लोगों को इस पुनित कार्य से जुड़ना चाहिए।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग जो हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे सोशल कॉजेस का भी पार्ट बनते हैं, तो ये हमारे अक्रॉस इंडिया हम इस तरीके की एक्टिविटी कई साल में कई करते रहते हैं। पिछले साल भी हमने करी थी, इस साल भी हमने अभी ऑर्गेनाइज करी है। इससे क्या है कि कुछ जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो एज अ स्टेट बैंकर जो हमारी सोशल ड्यूटी भी है, तो हम लोग उनको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सोसाइटी के माध्यम से ये ब्लड उनको जाता है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके काम आता है।
0: सुई उत्तरकाशी के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जोशियाड़ा स्थित जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया तथा मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आईटीआई के प्राचार्य प्रभात नेगी और स्वीप प्रभारी डॉ. शंभु प्रसाद नौटियाल ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जागरूकता सत्र के बाद छात्र छात्राओं ने जोशियाड़ा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में घर घर जाकर मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने बीएलओ के सहयोग से गणना प्रपत्र एकत्र किए और मतदाताओं को प्रपत्र भरने की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी भी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी इस कायनात से, इस दुनिया से सारे रंग छीन लिए जाएं तो क्या होगा? सब कुछ कितना खामोश, कितना बेरंग और कितना बेजान हो जाएगा ना? हमारी सांसें, हमारे जज्बात, हमारी यादें, ये सब किसी ना किसी रंग से ही तो मुकम्मल होते हैं। और जब इन रंगों के साथ सुरों का, संगीत का ताना बाना जुड़ जाता है तो ज़िंदगी एक उत्सव बन जाती है। तो चलिए, आज इस ख़ास प्रोग्राम में हम सफ़र करने वाले हैं ज़िंदगी के उन्हीं खूबसूरत रास्तों का, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रंग हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज बात होगी इश्क के सुर्ख लाल रंग की, कुदरत के खिले हुए फूलों के रंगों की, और सबसे पावन रंग की, जिसे हम देशभक्ति का रंग कहते हैं। तो अपने रेडियो की आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा सतरंगी होने वाला है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं कुदरत के सबसे ताज़ा फूलों के रंग के साथ।

कहते हैं कि जब किसी को किसी से इश्क होता है तो उसे पूरी दुनिया गुलाबी नजर आने लगती है। ये वो रंग है जो किसी चेहरे पर हया बनकर बिखरता है तो कभी किसी की आंखों में इंतज़ार बनकर ठहर जाता है। जब अमीर खुसरो साहब ने कहा था, आज रंग है मेरे महबूब के इश्क में रंग है, तो वो इसी रूहानी मोहब्बत का जिक्र कर रहे थे। सिनेमा ने भी इस रंग को कभी केसरिया कहा तो कभी गुलाबी आँखें कहकर पुकारा। अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी किसी से सच्चा इश्क हुआ है तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस रंग की तासीर क्या होती है। तो चलिए आपको इस रुमानी एहसास के रंग में सराबोर करते हैं और सुनाते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, इश्क के इस खूबसूरत रंग के बाद आइए थोड़ा ठहरते हैं और बात करते हैं ज़िंदगी के उन रंगों की जो हमें हर दिन जीना सिखाते हैं। ज़िंदगी सिर्फ एक रंग से तो नहीं चलती ना, इसमें कभी खुशियों का चमकीला रंग होता है तो कभी तजुर्बों का थोड़ा सा गहरा संजीदा रंग। हमारी सहेलियाँ जब हाथों में हरी हरी मेहंदी रचाती हैं, त्योहारों पर जब गेंदे के पीले फूलों के तोरण सजते हैं और जब हम अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसते हैं, तो वो ज़िंदगी का सबसे हसीन रंग होता है। सिनेमा ने भी हमें यही सिखाया है कि गोरी है कलाइयाँ तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ और त्योहारों के रंग ही हमारे रिश्तों में मिठास खोलते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालते हैं अपने लिए और घुल जाते हैं मस्ती के इन रंगों में।

दोस्तों, जहाँ इश्क फूल और ज़िंदगी के रंग हमारे दिल को सुकून से भर देते हैं, तो वहीं एक रंग ऐसा भी है जो हमारी रगों में दौड़ते लहू को जोश से भर देता है। एक ऐसा रंग जो किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए धड़कता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देशभक्ति के उस पावन रंग की, जिसे हम शान से केसरिया, सफ़ेद और हरा कहते हैं। ये हमारी मिट्टी का रंग है, ये हमारे तिरंगे का गौरव है। जब इतिहास के पन्नों से आवाज़ आती है, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा उठ जाता है। ये वो रंग है जो हमें सिखाता है कि देश प्रेम से बड़ा कोई मजहब नहीं, और इस मिट्टी की खुशबू से बड़ी कोई इत्र नहीं। सिनेमा के इस सफ़र में आइए, आज नमन करते हैं उन वीर शहीदों को और उनके जज्बे को, जो इस देश को एक सूत्र में पिरोता है। आइए सुनते हैं देशभक्ति के रंग में रंगा ये गीत।

दोस्तों, रंगू और सुरु का यह खूबसूरत कारवां अब अपने उस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं कि अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। आज के इस 30 मिनट के सफ़र में हमने ज़िंदगी के हर रंग को जिया। हमने फूलों की ताजगी देखी, वतन के लिए धड़कता देशभक्ति का वो पावन रंग महसूस किया। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रंग तो वो है जो दो दिलों को आपस में जोड़ता है, जो फीकी सी ज़िंदगी में भी मोहब्बत की मिठास घोल देता है। जब इंसान किसी के प्यार में इस कदर डूब जाता है कि खुद का वजूद भूल कर बस यही कहता है कि मैं रंग शरबतों का तो मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरी बन जाए कहानी। तो आइए कार्यक्रम के समापन में सुनाते हैं आपको यही गीत।

जाते जाते बस यही दुआ है मेरी कि आने वाला हर दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियों के, सेहत के और कामयाबी के नए रंग बिखेरता रहे। दूसरों की ज़िंदगी को अपने प्यार से रंगते रहिए, क्योंकि यही इंसानियत का सबसे चोखा रंग है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सौम्या कांडपाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुरबहार। अभी आप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में शीर्षक गीत के अंतर्गत आपने रंग शीर्षक पर आधारित कुछ फिल्मी नगमे सुने। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

फौजी भाइयों, सैनिक फिल्म के इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत, पैपन और अनु मलिक की आवाज़ों में।

फिल्म का ये गीत हिमेश रेशमिया और सुनीति चौहान की आवाज़ों में, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं शंघाई फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह शेखर और साथियों की आवाज़ों

फौजी भाइयों, आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं बेवफा फिल्म का ये गीत अभिजीत की आवाज़ में। ये गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवा रहे हैं कर्मा फिल्म का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फौजी भाइयों, कर्मा फिल्म के इसी गीत के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। जय हिंद।

फौजी भाई अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। पहले आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत, कलाकार हैं रवि गोसाई।

बोजी फेरी जी माई वाज ये सोनु भेजी दसवीं फेली बोजी भी ए पास अरे अंग्रेजी माँ बोदी बोजी फेरी जी माई वाज अरे

अरे काम धानी का बाना बोजी पेट पेड़ा बतानी, अरे गौ खोला पंचायत माँ बोजी अगवाड़ी चली जांदी, अरे काम धानी का बाना बोजी पेट पेड़ा बतानी, अरे

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: लोकसुर में लीजिए, आप सुनिए कुमाऊनी लोकगीत, गायिका है वीना तिवारी।

कुमाऊनी लोकगीत आपने सुना ज्योति उप्रेती के स्वर में। अब लोक सुर कार्यक्रम का समापन हम करने जा रहे हैं एक गढ़वाली लोकगीत के साथ समूह स्वरों में।

श्रोता भी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत लोक सुर कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और हम लेकर आए हैं श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, गीत संगीत गायकी की बात हो तो कई कलाकार हैं फिल्मी दुनिया में जिनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है। हर दौर की कई आवाजें हैं जिन्हें हम रोज भी सुने तो जी नहीं भरता, यूं लगता है ये स्वर लहरियां फिजाओं में गूंजती रहें, हवाओं में ये बहती रहें। और नए दौर के नए कलाकार, नई नई आवाज़ें, गायकी का मनमोहक अंदाज का जिक्र हो तो एक प्रभावशाली गायन शैली से सम्मोहित करने वाली आवाज़ है आज के दौर की मशहूर गायिका सोना महापात्रा की। और आज हम उन्हें ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि 17 जून उनका जन्मदिन है। तो सोना महापात्रा को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज उनकी आवाज़ का जादू चलेगा मेरी पसंद में।

श्रोताओं, सोना महापात्रा का जन्म 17 जून 1976 को कटक ओडिशा में हुआ। सोना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भुवनेश्वर से पूरी की। उसके बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक में डिग्री हासिल की और उसके बाद एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की। और एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कई जानी मानी कंपनीज में बतौर ब्रांड मैनेजर काम किया और ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने कई जिंगल्स बनाए और उनके जिंगल्स में टैगलाइन से वो आपको ब्रांड याद भी आ सकता है, जैसे कल का भारत है, पास आओ ना, जैसे कई जिंगल्स काफ़ी चर्चित हुए। उसके बाद उन्होंने कई और जिंगल्स बनाए, खुद गाए और दर्शकों और आलोचकों को उनकी आवाज़ बेहद पसंद आई। उसके बाद श्रोताओं, आमिर खान के शो में बतौर परफॉर्मर नज़र आई वो सत्यमेव जयते के ज़रिए घर घर में उन्हें पहचान मिली और उनका गाया ये गीत आपको याद आएगा, बेहद चर्चित हुआ।

और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा सोना महापात्रा ने फिल्म डेली वैली के गानों से, और इस फिल्म का गाना बेदर्दी राजा बेहद हिट हुआ। दर्शकों ने इस गाने को बहुत पसंद किया। आइए सुनते हैं वही गाना।

सुधों, सोना महापात्र की आवाज़ का एक ये अंदाज़ रहा तो दूसरी ओर उन्होंने तलाश फिल्म में जो गाना गाया वो शास्त्रीयता का रंग लिए गीत था, और इस गाने को आप सुनेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे।

तो श्रोताओं, बॉलीवुड की एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज़ और उनकी गायकी का अंदाज बिल्कुल जुदा है, सोना महापात्रा ऐसे ही कलाकार हैं। और फिल्मी दुनिया में यूं तो उनके एक से बढ़कर एक गाने सुपरहिट रहे हैं, और उनकी आवाज़ का जो ख़ास अंदाज है उसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। तलाश फिल्म के बाद उनकी फिल्म आई फुकरे, और इस फिल्म का गाना अंबर सरिया। इस गाने में उनकी आवाज़ ने एक तरह से दर्शकों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई उनके लिए, और हर वर्ग के द्वारा, ख़ासकर युवा वर्ग की बात करें तो इस गाने को बेहद पसंद किया गया, और उनकी गायकी के ख़ास अंदाज को भी बहुत सराहा गया। आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, ये मीठा सा गाना आपने सुना और गायकी के विविध आयाम सोना महापात्रा की आवाज़ में हमने देखे हैं समय समय पर उनकी गाए फिल्मी गानों के ज़रिए। और जहां संजीदा लोक संगीत शास्त्रीयता के कई अंदाज नज़र आते हैं उनकी आवाज़ में, तो वहीं रॉक म्यूज़िक की बात करें तो उसमें उनकी गायकी एकदम हमें आश्चर्य में डाल देती है, जैसे कि डेली बेली फिल्म का ये गाना।

जी हाँ, सोना महापात्रा की आवाज़ को सुनकर तो यूं ही लगता है कि दर्शकों की दीवानगी बढ़ जाती है। जी हाँ, सोना महापात्रा एक मशहूर गायिका तो है ही, साथ ही संगीतकार और गीतकार भी हैं, और हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन गायकी के लिए वो जानी जाती हैं। उनकी गायकी के कई अंदाज़ हमने भी मेरी पसंद में पेश करने की कोशिश की है, और जहाँ वो अपनी गायकी के ज़रिए दर्शकों के दिलों में जगह बना रही हैं, वहीं अपनी खूबसूरती के लिए भी वो बेहद प्रसिद्ध हैं, और दुनिया भर के कई

संगीत समारोहों में उन्होंने बतौर परफॉर्मर अपना प्रदर्शन किया है। और सोलो एल्बम की बात करें, संगीत कार्यक्रमों की बात करें, वेबकास्ट, संगीत वीडियोस, बॉलीवुड फिल्मों और विज्ञापनों में भी उनकी सुरीली आवाज़ का जादू बरकरार है। और उनकी आवाज़ की बात करें तो फैमिली फिल्म में अगर आप ये लोरी सुनेंगे तो ममत्व का भाव जगाती ये लोरी दिल को छू जाती है सोना महापात्रा की आवाज़ में।

तो सोना महापात्रा के निजी जीवन की बात करें तो संगीतकार और संगीत निर्देशक राम संपत से उनका विवाह हुआ है और ये दोनों पति पत्नी म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस ओम ग्रोन म्यूज़िक के पार्टनर भी हैं और दोनों की अपने अपना म्यूज़िक स्टूडियो मुंबई में है। और सोना महापात्रा की बात करें तो फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक उनके चर्चित गाने हैं, जैसे तलाश, तैश, फुकरे और फैमिली, खूबसूरत, डाली बैली जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उनकी आवाज़ का जादू चला है। और आज विविध रंग उनकी आवाज़ के आपने सुने फिल्म संगीत के कार्यक्रम हमारे मेरी पसंद में। और श्रोताओं, एक बार हम फिर से सोना महापात्रा को आज उनके जन्मदिन की ढेर सारी असीम अनंत शुभकामनाएं देते हैं। उनका भविष्य उज्जवल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आवाज़ का जादू आगे भी बिखेरते रहें। आज मेरी पसंद का सफ़र अंजू पांगती के साथ यहीं तक। इजाज़त दीजिए और सोना महापात्रा की आवाज़ में एक और खूबसूरत गाना सुनते रहिए।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

बहुत बहुत स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी श्रोता बहनों को सखियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी संगीता तिलारा। बहनों इन्हीं उम्मीदों और दुआओं के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम यही कहना चाहते हैं बहनों कि खुश रहना मुस्कुराना और स्वस्थ रहना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि अक्सर बहनों हम अपने परिवार और अपनों की देखभाल में घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने मन मस्तिष्क की सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन बहनों ये हमेशा याद रखें कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव चिंता लगातार उदासी चिड़चिड़ापन नींद में बदलाव आना या किसी काम में मन न लगना ये सभी लक्षण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े होने के संकेत हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में बातों को नज़रअंदाज करने के बजाय अपनी भावनाओं को साझा करना और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, विशेष रूप से मातृत्व के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद। महिलाओं के जीवन में कई शारीरिक और भावात्मक बदलाव आते हैं और ऐसे समय में कुछ महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाला अवसाद का सामना करती हैं जो एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या तो है। लेकिन अच्छी बात यह है बहनों कि सही जानकारी परिवार के सहयोग उचित सलाह और उपचार की मदद से बिल्कुल इसे ठीक किया जा सकता है। और बहनों आज हम आपको पोस्ट पार्टर्म डिप्रेशन जागरूकता से रोकथाम विषय पर डॉक्टर वीना तेजन असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से की गई दीपिका पंत की ये भेंटवार्ता सुनवा रही है। बहनों माँ बनना एक स्त्री के लिए जीवन की सबसे सुखद अनुभूतियों में से एक है। माँ बनते ही एक स्त्री का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। गर्भावस्था के 9 महीने हर महिला के लिए खुशनुमा लेकिन चुनौती भरे होते हैं। इस दौरान वो कई शारीरिक व मानसिक बदलावों से गुजरती है और ये शारीरिक व मानसिक बदलाव या चुनौतियाँ शिशु के जन्म के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती हैं। ऐसी ही एक मानसिक स्थिति जिसे कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं उसके बारे में विस्तार से जानने और समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वीना तेजन को जो कि

0: प्रोफेसर हैं सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: धन्यवाद
0: मैम। तो अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान क्या कोई मानसिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं?
1: जी हाँ, इस दौरान बहुत से मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि शुरुआती 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज्यादा होते हैं। तो इस दौरान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना और नींद में कमी, थोड़ा मूड का लो रहना, उदास रहना, तो ये सब दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। फिर 4 से लेकर अगले 3 महीने 7 महीने तक थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसके कारण प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो ठीक महसूस करती है उस समय पे। जी, उस समय पे ये इजी लाइफ एक हो जाती है उस समय पे। बट जब हमारा 8वां और 9वां वाला ये समय आता है, इसमें तरीके तरीके की जांचें भी होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड और बाकी के जो टेस्ट होते हैं, तो उसको लेके मदर को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि कैसा होगा बच्चे की ग्रोथ को लेकर। जी, और कैसी डिलीवरी हो पाएगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो पाएगी या घर में होगा या सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी वो लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरते हैं और उस दौरान उनको बहुत सपोर्ट की भी जरूरत होती है, जो अगर पर्याप्त उसमें ना मिले तो ये बहुत ज्यादा घातक भी साबित होता है।
0: मैम, आजकल हम एक टर्म बहुत सुनते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन।
1: जी,
0: और ये लगता है कि हमेशा से हो रहा था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी कम थी। तो अगर हम अपनी जो सुनने वाली हमारी बहनें हैं उनको समझाना चाहें, एक अगर उनको हम एक इसकी परिभाषा देना चाहें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, तो आप एक सरल भाषा में या सरल शब्दों में कैसे समझा पाएंगे मैम इसे?
1: देखिए, यदि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को अपने पोस्टपार्टम पीरियड में डिलीवरी के बाद,
0: एक बात, पोस्टपार्टम पीरियड में डिलीवरी के बाद का
1: जी, पोस्टपार्टम पीरियड इज डिलीवरी के बाद वाला पीरियड, उसके 2 हफ्ते तक नॉर्मली बहुत लोगों में ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे उदासी होना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग। बट अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कह सकते हैं। वैसे तो जो हमारी किताबों में क्राइटेरिया दिए हुए वो है 4 वीक, है ना, विद इन 4 वीक अगर डेवलप होता है यू कैन कॉल इट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बट अगर समस्या 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है तो आपको साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है।
0: जैसा कि मैम आपने बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो लक्षण है, अगर ये डिलीवरी के बाद 2 हफ्ते या उससे ज्यादा ये लक्षण जो आपने लक्षण बताया उदासी दिखते हैं, तो ये पोस्टपार्टम की तरफ नहीं लगाई। तो मैम, इसके अलावा और कौन से ऐसे लक्षण जिनसे ये पता लगे कि ये जो है प्रसूता है, मान है कि पोस्टपार्टम की तरफ जो है जा रही है?
1: ये कुछ तो है, जैसे घबराहट, बेचैनी और उदासी, मूड स्विंग्स होना, अचानक से बहुत खुश हो जाना, अचानक से बहुत उदास हो जाना, अचानक से अपने जो लाइफ पार्टनर है उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ जाना, अचानक से बहुत ज्यादा डाउट्स में आ जाना, तो इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साइकोसिस के लक्षण, जिनको पॉजिटिव सिम्टम्स कहा जाता है, जैसे कि कानों में आवाजें आना और तरीके तरीके के भ्रम हो जाना, है ना, जैसे डिल्यूजन जिनको बोला जाता है, इतना फर्म बिलीव होता है उस चीज पे, डिल्यूजन जो होता है, तो उसको हम ऐसे किसी को बात कह के बोल के नहीं समझा सकते हैं। डिल्यूजन मतलब वो उसका फॉर्म फिक्स बिलीफ है, यू कैन नॉट शेक। तो इस तरीके के सिम्टम्स आ जाना, और जो आवाजें होती हैं कभी कभी आती हैं जो मरीज को, उनमें कभी कभी ऐसी डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें ये बच्चा परेशान करेगा या तुम्हारा ये बच्चा नहीं है, तो वो कभी कभी ऐसे उसमें प्रक्रिया में, जब उनको इंसाइट तो होता नहीं है कि उनको कोई बीमारी है ऐसी, तो वो कभी कभी अपने बच्चों को हार्म भी पहुंचा सकती हैं।
0: कितने समय तक, 1 साल 2 साल या कुछ हफ्ते कुछ महीने, कब तक संभावना बनी रहती है कि अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन?
1: अब तो 6 मंथ हो सकता है कि जो भी ये है वो विद इन 6 मंथ्स वी विल कॉल इट एट पोस्टपार्टम।
0: अगर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी होता है तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन
1: नहीं, तो फिर वो अलग है।
0: अगला प्रश्न मैम आपसे, कि अगर कोई महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है, जूझ रही है, तो ऐसे में परिवार की और खासतौर पर पति की क्या भूमिका है?
1: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पति की भूमिका ही एक्चुअली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी गर्भवती महिला की जिंदगी में, उसके जो प्रसूता के बाद जो फेज होता है उसके लिए, क्योंकि इस दौरान एक तो एक नया जीवन धरती पर आता है, तो उनको एक उसको भी एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना, उसकी पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस है, किसी किसी को हाइपरटेंशन की वजह से प्री एक्लेम्पशिया, डायबिटीज, तो उनमें ऑलरेडी भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपने फिजिकल उसको भी गुजर रही होती है, साथ में बच्चे का पूरा साथ में जिम्मेदारी है, और तो उसके लिए अगर हस्बैंड थोड़ा सपोर्ट कर

0: कि उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, उनकी थोड़ा जरूरतों को देखें और बच्चे का केयर में इक्वल हाथ बटाएं, है ना। जितना मैक्सिमम वो लोग कर सकते हैं उसके लिए वो उनको सपोर्ट करें। थोड़ी ऐसी मानसिकताएं भी होती हैं कि जैसे इतना क्या जरूरत है किसी को केयर की और ठीक हो जाएगा, जो मदर होती है उसको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, बच्चे को ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए।
1: और शायद मैम फिजिकल जो चेंजेस हैं, फिजिकल जो चैलेंजेस हैं फीमेल्स के, उसको तो शायद फिर भी समझते हैं, मेंटल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए
0: बिल्कुल
1: तैयार है।
0: बिल्कुल
1: मैम, यदि किसी महिला में पोस्टमार्टम डिप्रेशन डिटेक्ट होता है

0: फिजिकल जो चेंजेस हैं, फिजिकल जो चैलेंजेस हैं फीमेल्स के, उसको तो शायद फिर भी समझते हैं, मेंटल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए
1: बिल्कुल
0: लोग अभी तैयार हैं।
1: बिल्कुल
0: मैम, यदि किसी महिला में पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिटेक्ट होता है तो कैसे उपचार किया जाता है?
1: हम लोग दो तरीके से उपचार कर सकते हैं। एक तो वी कैन हम लोग जा सकते हैं थेरेपी के लिए, कि हम उनको थेरेपी करें, काउंसलिंग करें, उनके इश्यूज को एड्रेस करें, और बाकी वी कैन गिव हम लोग दवाइयां दे सकते हैं उनको, बहुत सारे क्लास की दवाइयां हैं। बट हाँ, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो दूध के थ्रू बच्चे में जाने का रहता है, तो इसलिए
0: दूध पिलाएंगे तो बच्चे में ही नुकसान हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी हमें जानकारी दी कि डॉक्टर्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि महिला ब्रेस्ट फीडिंग है तो कौन सी मेडिसिन दी जाए ना दी जाए, और अगर देना जरूरी है तो कैसे वो बच्चे को साथ में स्तनपान करना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मैम, ये भी एक कारण है कि महिलाएं घबरा के मेडिकेशन पे आना नहीं चाहती।
1: और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि दवाई अगर कंटिन्यू करेंगे तो बच्चे को हार्म होगा, और जैसे कई महिलाएं आती हैं मिर्गी के दौरे आते हैं जिनको, तो अब मिर्गी में हमें इलाज कंटिन्यूस रखना पड़ता है, तो अब वहाँ पर वो आ जाता है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो बच्चे के लिए हानिकारक है। तो घर वाले मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे की सेफ्टी के लिए दवाइयाँ बंद करवा देते हैं फीमेल की, बट दैट इज़ वेरी हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो फीमेल को भी हार्मफुल है और बच्चे को भी, दोनों की जान का भी खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमको रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखना है कि माँ को रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट ठीक है, बच्चे को कितना हम चेंज कर सकते हैं दवाइयाँ या वो, पर इलाज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है।
0: मैम, जैसे आपने मेडिकेशन के बारे में बताया, थेरेपीज के बारे में बताया, तो जैसे अमूमन शारीरिक कोई समस्या हो तो उसके लिए जांचें होती हैं, तो क्या पीपीडी के लिए भी कोई जांच होती है?
1: जी, टेस्ट इसके लिए हमारे स्केल्स होते हैं बेसिकली साइकेट्री में, तो ईडनबर्ग पोस्ट डिप्रेशन इन्वेंट्री होता है, वो वी अप्लाई, एंड उसमें जैसे जैसे रेटिंग आता है स्केल के अकॉर्डिंग वी कैन सी ऑल्सो कि कितना सिवियरिटी है उसका, कितना क्या, तो
0: उसके हिसाब हाँ किसी पेशेंट को क्या उपचार चाहिए और कितना उसके।
1: नहीं, एक्चुअली वो एक स्केल होता है जिसमें हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हम पेशेंट से पूछते हैं
0: बातचीत करके,
1: हाँ, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम स्कोरिंग करके जो कट ऑफ होता है उसमें मिला के देखते हैं, तो अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज प्रेजेंट, अदरवाइज।
0: मैम, अगला प्रश्न जो मेरा है वो ये है कि आपने क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई विशेष वर्ग है महिलाओं का जिनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की आशंका ज्यादा होती है?
1: जी बिल्कुल, तो ज्यादातर ये लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में मिलता है, वर्किंग फीमेल्स में भी ज्यादा है, बिकॉज उन लोगों को भी बहुत ज्यादा चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, प्रेशर होता है, और जहाँ पर भी सपोर्ट नहीं है, पति या फिर हमारी इन लॉज वाली फैमिली है, वो फीमेल्स ज्यादा सफर करती हैं। तो ऐसे जो परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी भी फैमिली में बहुत डिसफंक्शन है, वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा प्रेजेंट है। जी जी जी
0: मैम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कुछ तरीके हैं या ऐसे कुछ हम मेजर्स ले सकते हैं डिलीवरी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जिनसे कि इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन की आशंकाओं को कम किया जा सके?
1: बिल्कुल, हम अगर अप्रोप्रिएट सोशल सपोर्ट, मतलब जो भाई इन-लॉज और पति जो हैं, जो भी आसपास की फैमिली है, वो अगर अच्छे प्रॉपर सपोर्ट दे फीमेल को और उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान दे, उनको लगता है कि ऐसे सिम्टम्स उनको आ रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं, तो तुरंत उनको खुद से भी इमोशनली स्टेबल करें और तुरंत साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को भी अप्रोच करें, तो उनको प्रॉपर टाइम पे ये चीज के लिए हमेशा चेक करते रहें कि ऐसा कोई भी चीज, हाँ वो तो नहीं है। जी जी, आफ्टर डिलीवरी बिल्कुल वो करें, और जो ऑलरेडी पहले से ही पेशेंट है प्रेगनेंसी से पहले से जो फीमेल्स हैं जो कि ऑलरेडी दवाई पे हैं, तो उनका भी फॉलोअप रेगुलर किया जाए, उनको दवाई पे मेंटेन किया जाए, ताकि ऐसी कॉम्प्लिकेशन को हम पहले से ही रोक भी पाए। प्रिपेयर्ड
0: मैम, जैसे आपने भी बताया कि जो पहले से ही इस तरीके के डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें मेरा एक और प्रश्न है, आजकल एक बड़ा तबका है जिससे जूझ रहा है, तो मान लीजिए डिलीवरी से पहले अगर कोई महिला एंग्जाइटी या डिप्रेशन की मरीज रही है या उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं उससे, तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन आने की चांसेस कितने बढ़े?
1: जी बिल्कुल, उनमें पोस्टपार्टम और ये सब के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मोर देन 50% यू कैन से, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक तो प्रीडिस्पोज्ड है उस चीज के लिए, और प्रेगनेंसी में जो इतने ज्यादा बदलाव होते हैं शारीरिक और मानसिक, तो उसमें कंटिन्यूस अगर उनको वो नहीं कांटेक्ट में रखा जाएगा तो बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है। और 40 प्लस में या 30 प्लस में प्रेगनेंसीज हो रही हैं, वो भी एक कारण है क्योंकि उस समय पर भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस बच्चे के लिए भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा जो है वो एल्डरली मैरिजेस में भी देखा जाता है।
0: मैम अल्मोड़ा जो हमारा शहर है,

0: लोग हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ जो उनके परिजन आते हैं वो कितना इस बारे में जागरूक होते हैं कि ऐसी भी कोई चीज है पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा तबका है अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें तो डिप्रेशन और ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनकी जागरूकता कितनी है इस चीज को लेकर इसके बारे में मुझे बताना।
1: तो अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर अल्मोड़ा में ज्यादातर फीमेल्स नेग्लेक्ट मतलब आफ्टर मैरिज वाला जो है, क्योंकि थोड़ा नेग्लेक्टेड रहती हैं और वो अपने मेटर्नल फैमिली से भी उतना कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो एक इनसिक्योरिटी और जो ऑलरेडी बहुत आत्मविश्वास में कमी, ये सब चीजें, और यहाँ पर उसको जो ससुराल की तरफ से जो सपोर्ट है वो तो मिल ही नहीं पाता है, और वो लोग ट्रीटमेंट तो सोचते ही नहीं, तो फीमेल्स को वो इतना प्रॉपर अटेंशन ही नहीं दे पाते, तो अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है।
0: जी मैम, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि एक स्टिग्मा भी है, लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमें शारीरिक विकार तो होते हैं लेकिन मानसिक विकार भी होते हैं, उसको एक्सेप्टेंस कम है। तो मैम अभी जो हमने बातचीत की पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में, तो मैं आपसे एक गुजारिश है मेरी कि अगर हमें सुनने वाली कोई भी महिला जो हमें सुन रहे हैं, महिला और साथ ही साथ हमें सुनने वाले हमारे भाई श्रोता भी, अगर उन्हें महसूस होता है कि उनके घर की कोई महिला इससे गुजर रही है, या फिर महिलाओं को ऐसा महसूस होता है कि उनकी परिचित कोई महिला पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है या फिर ऐसी किसी एंग्जाइटी से गुजर रही है और वो चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहता है, तो वो कैसे आप तक पहुँचे, इस बारे में हमें आप थोड़ा गाइड करें।
1: जी, आप यहाँ जो सोबन सिंह जीना जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हम लोग यहाँ बेस हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी है, साइकियाट्रिक ओपीडी, जो कि हम डेली रन करते हैं और 10 से 3 का समय है, तो आप कभी भी उस समय पर हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। डॉक्टर वीना मायसेल्फ मैं हूँ वहाँ पर, बाकी हमारे सोशल वर्कर हैं मिस्टर विनय जोशी एंड हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मिस्टर प्रियंका बुनाल, तो आप इनमें से कभी भी वहाँ पर उस ओपीडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने आसपास वालों को या कभी भी आप किसी को भी डिटेक्ट करते हैं तो एज सून एज पॉसिबल आप प्लीज रेफर कीजिए या हमारी ओपीडी में हमको दिखा सकते हैं।
0: आपकी बातों से मैम मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक विकार बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, ये क्योरेबल है, पर जो कमी है वो हमारी जागरूकता।
1: जी
0: बहनों, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में ये जानकारी आपसे साझा करने का उद्देश्य ये था कि हम आपको समझा सकें कि माँ बनने के बाद आपकी अपने मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका शिशु भी स्वस्थ रह पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, साथ ही धन्यवाद करते हैं डॉक्टर वीना तेजन का जिन्होंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: बहनों, अभी आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन जागरूकता से रोकथाम विषय पर डॉक्टर वीना तेजन असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से की गई दीपिका पंत की ये भेंट वार्ता सुन रही थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी और आप इनसे लाभ अवश्य लेंगी। हम तो यही चाहते हैं बहनों कि आप हमेशा, सभी बहनें स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें, और इसी मुस्कुराहट के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत गीत।

0: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का, आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो, जो हमारी सेहत के लिए गुणकारी और लाभदायक तो हो और साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। और बहनों, आज रसोई से के सेगमेंट में हम जानेंगे एक ऐसे ही सेहत के खजाने यानी कि पौष्टिक आहार की, जो हमारी रसोई में आसानी से बन जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। हम बात कर रहे हैं अंकुरित अनाजों की, जैसे मूंग, काला चना, मटर, सोयाबीन, राजमा और मोठ। इसके जैसे कई अनाजों को अंकुरित किया जा सकता है। इन्हें बनाने के लिए बहनों, सबसे पहले सभी अनाजों को अच्छी तरह से धोकर के 8 से 10 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद जब ये भीग जाएं, तो पानी से निकाल कर इन्हें साफ सूती कपड़े में एक पोटली बनाकर बांध लें या फिर किसी बर्तन में रख कर ढक सकती हैं। लगभग 24 से 36 घंटे में इनमें से छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं और इन अनाजों में विटामिन, खनिज, प्रोटीन और रेशे यानी कि फाइबर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। बहनों, इनको खाने से ये हमारी पाचन क्रिया को सही रखते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। अंकुरित अनाजों को सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। इसमें आप खीरा, टमाटर, प्याज, नींबू और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर इसका स्वाद और बढ़ा सकती हैं। और अगर किसी को कच्चे अंकुरित अनाज खाने में या पचाने में परेशानी हो, तो इन्हें हल्का सा उबाल कर या भाप देकर भी खाया जा सकता है। बहनों, इन्हें बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बासी, दुर्गंध आने पर ये बहुत दिनों तक रखे हुए अंकुरित अनाजों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर इस गर्मी के मौसम में। साथ ही बहनों, संतुलित मात्रा में ही इन्हें खाना चाहिए, इसका ध्यान भी रखें। तो बहनों, अपनी थाली में अंकुरित अनाज को शामिल करें। आप स्वाद और पोषण पाकर सेहतमंद जिंदगी की ओर एक कदम बढ़ा सकती हैं। ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और बहनों, जब आप खुद स्वस्थ रहेंगी तो ही परिवार का ध्यान रख पाएंगी। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सभी श्रोता बहनें हमेशा स्वस्थ

तो मैंने इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के इस खूबसूरत और स्नेह भरे साथ का समय यहीं पर संपन्न होता है। आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थे दीपिका पंत। तो बहनों, घर संसार कार्यक्रम से विदा लेने का समय है। फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले अंक में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी मुस्कान पूरे घर को खुशियों से भर देती है। और इस समय अपनी रेडियो सखी संगीता तिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बागेश्वर में आपदा राहत सामग्री रवाना। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्यवाही की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल में रन फॉर योगा के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर फिट इंडिया का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव और ग्लोबल फूड फेस्टिवल आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देहरादून स्थित IHM गड़ीकेंड में स्थित पर्यटन मुख्यालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में सभी बोर्ड सदस्यों तथा उनके नामित प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल कॉन्क्लेव कौसानी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव पहली बार प्रदेश में आयोजित होगा और इसमें 500 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। इसका आयोजन नवंबर माह में देहरादून व रामनगर में उत्तराखंड इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, फूड फेस्टिवल आदि कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही विशेष पर्यटन के लिए त्रियुगी नारायण, कार्तिक स्वामी व कैंची धाम के विकास को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बागेश्वर में रेड क्रॉस भवन से संभावित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर ने राहत व बचाव व्यवस्था को मजबूत करते हुए कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों के लिए आपदा राहत सामग्री रवाना की है। मॉनसून के दौरान सड़कें बंद होने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आकांक्षाओं को देखते हुए कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों में पहले से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता मिल सके। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशन में संस्था लगातार मानव सेवक के कार्यों में जुटी हुई है।
1: शुरू होने वाला है तो इसके तहत जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध थी, राहत सामग्री जैसे किचन सेट हो गए, कंबल हो गए, तिरपाल हो गए, अन्य सामग्री जो भी हमारे पास उपलब्ध थी, आज हमने रेड क्रॉस भवन से कार्यालय से उसको रवानगी कर रखी है। और हमारे सभी सम्मानित सदस्य, सम्मानित पदाधिकारी लगातार जनहित में, क्षेत्र में लगातार जन सेवा में लगे रहते हैं। इसी के तहत अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, शासन प्रशासन जो भी हमसे सहयोग की अपेक्षा करता है, हम लगातार तत्पर रहते हैं।
0: उन्होंने बताया कि मॉनसून सीजन को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री का भंडारण किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर जिले के किसी भी हिस्से में तत्काल सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों तक शीघ्र राहत पहुंचाना संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए रेडक्रॉस की पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 20 जून को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम तथा 26 जून को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के हस्तांतरण अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं श्री जोशी ने आगामी 26 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंतनगर व रुद्रपुर में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान किसानों के हितों

0: से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटतल्ला ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2025 के लिए जारी नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सूची में विद्यालय को 95.8% अंक मिले हैं। शिक्षक सत्येंद्र भंडारी ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को ही और बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे भी निरंतर प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की ने इस उपलब्धि को जनपद के लिए गौरव का विषय बताया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDDA ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का कहना है कि बिना स्वीकृत किए जाने वाले निर्माण कार्यों और अवैध भूमि विकास को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित भू स्वामियों की ओर से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके चलते नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं बल्कि क्षेत्र में सुनियोजित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग भविष्य में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए बिना अनुमति के निर्माण कार्यों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने नैनीताल के प्रसिद्ध और पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र चाइना पीक यानी नैना पीक पर स्थित वन चौकी के भीतर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में सदस्य सचिव ने बताया कि 14 जून 2026 को ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने खुद देखा कि वन चौकी पर तैनात एक वन रक्षक यहां मैगी, प्लास्टिक की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्कुट जैसी चीजें बेच रहा था। पूछताछ करने पर वन रक्षक ने दावा किया कि उसके पास इसकी आधिकारिक अनुमति है, जिसके बाद प्राधिकरण ने मामले की कानूनी और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने DFO से इस पूरे मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आगामी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नैनीताल जिले में योग को लेकर उत्साह दिख रहा है। इसी क्रम में मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में रन फॉर योगा के आयोजन में स्कूली बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने योग के लिए दौड़ में हिस्सा लेकर फिट इंडिया का संदेश दिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की भी जानकारी कार्यक्रम संयोजक आयुष विभाग द्वारा दी गई। अपर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी नैनीताल डॉक्टर बबीता कन्याल ने बताया कि 21 से 21 जून तक आयुष विभाग द्वारा 100 कार्यक्रम आयोजित कर 10,000 लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा।
2: पूरे 21 मई से 21 जून तक 100 प्रोग्राम हमने योगा दिवस पे आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को हमने योग के लिए प्रेरित किया है। और इस वर्ष जो योग की थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ हम कैसे संतुलित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें।
0: उन्होंने बताया कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए रन फॉर योगा कराया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहन पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24

0: 20वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बागेश्वर में आपदा राहत सामग्री रवाना। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सहजपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्यवाही की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल में रन फॉर योगा के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर फिट इंडिया का संदेश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। शुरुआत कर रहे हैं सोना महापात्रा के गाए गीत के साथ।

ये थी सोना महापात्र, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल।

सुगम संगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1308।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील

0: झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी, अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
2: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
2: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तान

0: ऐसा ही एक जाबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: ओ, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: हाँ, खुद करनी होगी।

0: 콧간이 여기 차이가
1: फिर क्या हुआ दादी?
2: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई।
3: ओ,
2: सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
2: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
2: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना पड़ेगा।
3: उसके बाद क्या हुआ?
2: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
5: और नहीं हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
2: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
2: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
2: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
2: सारी छावनी में खलबली मच गई।
1: उसके बाद क्या हुआ दादी?
2: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
7: अरेस्ट करो!
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
10: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
1: दादी जी, फिर क्या हुआ?
2: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: 빨대 코 티코나 망자하이 두란트 아스파탈 페조.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद चीख होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: देवेंद्र, नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
8: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
9: अच्छा माँ।
10: माँ
9: लो देवेंद्र भी आ गया।
10: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
8: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
9: ठीक है माँ।
10: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
9: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
10: ये देखो दीदी, ये मारा।
9: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
10: अरे ये मारा।
9: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
10: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
9: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
10: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
8: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
9: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
11: हमें अंदर आने दो।
9: अरे क्यों?
12: ए लड़की रास्ते से हट जा।
9: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
11: लड़की हट।
9: माँ
11: ये चाकू देख रही है ना,
12: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
9: अरे
12: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
9: क्या हुआ? देखो जल्दी
8: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
11: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
9: हाँ मेरी माँ को छोड़ दो।
11: ये चाकू देख रही है ना,
9: छोड़ दो।
8: मुझे नहीं मालूम,
12: याद नहीं कहाँ रखी है। चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
8: अरे, अरे मेरे पास तो छोड़ो,
9: मेरी माँ को छोड़ो।
11: चुप चुप, आवाज से गाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज
9: नहीं।
12: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
8: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
9: देवेंद्र।
10: हाँ दीदी।
9: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
10: अच्छा,
9: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
10: अच्छा।
9: हेलो।
11: हाँ बेटा बोलो।
9: पापा।
11: हाँ
9: पापा।
11: हाँ बोलो बेटा।
9: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
11: कौन घुसा है?
9: माँ को बहुत मार रहे हैं।
11: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
9: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
10: अच्छा।
9: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
13: बचाओ।
14: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
13: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
8: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
13: देखो ना, सबकी जान बच गई।
8: बहादुर है मेरी बच्ची।

0: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के लोकगीत, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद आप लेते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं चंद्रकला पंत के गाए कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: श्रोता भी सुन रहे थे उत्तराखंड के लोकगीत। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: निगम G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे।

0: संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्लाह और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। श्रोता इस समय सुनते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा।
8: किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर से की जाती रही है और 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ साथ नया दौर आया। सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों जैसे वानिकी का सरल घरेलू उत्पाद GDP में 16.6% हिस्सा था। उस समय संपूर्ण कार्य करने वालों का 52% कृषि में लगा हुआ था। अगर भारत में देखें तो भारत में कृषि में 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर आदि का प्रयोग करते थे। 1960 के बाद से फसल के उच्च उपज बीजों का प्रयोग शुरू हुआ। इससे सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा, जो कि पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को तो धीरे धीरे कम कर ही रहे थे, साथ ही साथ वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। फसलों में अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग करने के बाद भी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अतः आज हमें रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों यानी कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आज मैं अपने किसान भाई और बहनों को इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ कृषि विकास में सहायक हैं। जैसे कि किसान भाइयों, सूक्ष्म जैविकी उन सजीवों का अध्ययन है जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जैविकी में तत्पर शोध होते रहते हैं एवं यह क्षेत्र अनवरत प्रगति पर अग्रसर है। अभी तक हमने शायद पूरी पृथ्वी पर के सूक्ष्म जीवों में से केवल 1% का ही अध्ययन किया है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें जीवाणु प्रमुख हैं। जीवाणु एक कोश के जीव हैं जिनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल, मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। ये मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गलम जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूम पपड़ी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु तथा 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर अगिनत जीवाणु पाए जाते हैं जो संसार के बायोमास का एक बहुत बड़ा भाग है। ये कई तत्वों के चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ साथ पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जो कि पौधों को आवश्यक मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लौह, जस्ता आदि उपलब्ध कराते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं जो कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ते हैं जो कि फसलों में होने वाले रोगों से बचाते हैं और इनके प्रयोग का भूमि पर कोई दुष्परिणाम भी नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई और बहन जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों पर जो ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं उनमें बड़े लाभ देने वाले सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की आणविक नाइट्रोजन, जिसका पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, को पौधों के लिए सुलभ अमोनिया रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो प्रमुख सूक्ष्मजीव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जैसे पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व सुलभ कराने वाले सूक्ष्मजीव दो प्रकार के हैं। पहले, पौधों को के साथ सहजीवी रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले, जैसे कि राइजोबियम, मीजोराइजोबियम, सीनोराइजोबियम एवं एजोराइजोबियम। अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए फसल के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग विभिन्न दलहनी फसलों जैसे फ्रेंच बीन, मटर, मसूर, सोयाबीन, गहत, अरहर, मूंगफली, राजमा इत्यादि में किया जा सकता है। इनके प्रयोग से विभिन्न दलहनों की उपज में 10-15% तक की वृद्धि पाई गई है एवं किसान भाई और बहनों, इनके प्रयोग से फसलों को 50 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो विभिन्न दलहनों की जड़ों पर गांठों का निर्माण करने वाला राइजोबियम जीवाणु भूमि में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है, परंतु कई स्थानों पर मिट्टी में इनकी पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण अथवा प्राकृतिक रूप से विद्यमान राइजोबियम जीवाणु की कम सक्रियता एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कम होने के कारण इस जीवाणु का दलहनी फसलों में प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जड़ ग्रंथियों का निर्माण हो सके और दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु के उपयोग का लाभ अगली बोई जाने वाली फसल में भी देखा गया है। दूसरे जो आते हैं वो हैं दूसरे स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु, जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु, जो कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय आणविक नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करते हैं, जिसका उपयोग पौधे सीधे कर पाते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न धान फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, मड़ुआ, मादेरा, इसके अलावा सब्जियों में जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च इत्यादि में किया जा सकता है। इस जीवाणु के प्रयोग से फसलों को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है एवं इसकी उपज में 10-15% तक की वृद्धि करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त इस जीवाणु से बीज की जमाव क्षमता में भी वृद्धि देखी गई है एवं पौधों में रोगों का प्रकोप भी कम होता है, परंतु यह फसलों को संपूर्ण नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है। अतः अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए शेष नाइट्रोजन का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों द्वारा करना चाहिए। इसी क्रम में दूसरे जीवाणु बिजरिंकिया, एजोमोनास, ड्रेक्सिया, जो कि स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। एजोस्पाइरलम जीवाणु आंशिक स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर फसलों को लाभ पहुंचाते हैं। इस जीवाणु द्वारा फसलों को 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है और जीवाणु का प्रयोग कर फसलों की उपज में 6-10% तक की वृद्धि देखी गई है। इसका प्रयोग विभिन्न धान फसलों में किया जा सकता है, जैसे कि परंतु धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलों में इस जीवाणु का लाभ अधिक देखा गया है, क्योंकि इन फसलों के साथ इस जीवाणु की विशेषता पाई गई है। इस जीवाणु का प्रयोग धान की फसल में भी किया जा सकता है। उर्वरक नाइट्रोजन के साथ ही एजोस्पाइरलम उपयोग का लाभ फसल को प्राप्त होता है। ये भी देखा गया है कि एजोस्पाइरलम के प्रयोग करने से जड़ों का अधिक विकास होता है, जिससे कि वह भूमि से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती हैं। इससे पौधों को अतिरिक्त लाभ होता है। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्मजीव अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर इसे पौधों के उपयोग योग्य बना देते हैं। इन्हें फॉस्फेट विलयकारी सूक्ष्मजीव या PSB के नाम से जाना जाता है। जीवाणुओं में बैसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम इत्यादि और कवकों या फफूंदों में एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा इत्यादि उदाहरण हैं। इन जीवाणुओं का उपयोग सभी धान्य, तलहनी, तिलहनी फसलों में किया जा सकता है। भूमि में विद्यमान घुलनशील फॉस्फोरस के प्रकार के आधार पर इन फसलों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक फॉस्फोरस के बराबर लाभ पहुँचाते हैं। रॉक फॉस्फोरेट के साथ इनके प्रयोग से 30 से 35 किलोग्राम फॉस्फोरस के बराबर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फॉस्फोरस के उर्वरक अपेक्षाकृत महंगे होते हैं एवं इन उर्वरकों की प्रयोग क्षमता भी कम होती है। अतः फॉस्फेट विलयकारी जीवाणु का प्रयोग फसलों में फॉस्फोरस तत्व को उपलब्ध कराने के लिए करना चाहिए। इनका उपयोग नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्लम के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। अब किसान भाई सवाल यह होता है कि इन सूक्ष्म जीवों या जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें। इसके लिए इन विशेष जीवाणुओं की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारी धारक धूलीय पदार्थ जैसे चारकोल, लिग्नाइट, टैल्क पाउडर आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें प्राय कल्चर, बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है, और ये बाजार में भी उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए फसल के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः किसी भी फसल के 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक पर्याप्त होता है। सबसे पहले किसी छायादार जगह पर साफ बोरी, अखबार, पॉलिथीन

बिछाकर उस पर बीजों की एक ढेरी बना लें और हाथ में दस्ताने पहनकर 200 से 250 ग्राम गुड़, चीनी या CMC के ठंडे घोल में जैव उर्वरक की निर्धारित मात्रा को अच्छी प्रकार मिलाकर बीजों के ऊपर उड़ेलकर उसे बीजों के साथ इस प्रकार मिलाएं कि प्रत्येक बीज के ऊपर जैव उर्वरक की एक समान परत चिपक जाए। इस प्रकार उपचारित बीज को 20 से 25 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर देनी चाहिए। दो या अधिक जैव उर्वरकों को एक साथ प्रयोग करने के लिए इनकी आवश्यक मात्रा का एक साथ घोल बनाकर बीजों का उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं धान और सब्जियों की फसलें जिनकी रुपाई की जाती है उनमें जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए जैव उर्वरकों की 250 ग्राम मात्रा का 25 से 30 मिलीलीटर पानी में घोल बना लिया जाता है।

0: होने के पश्चात जड़ों को इस घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखने के पश्चात उसकी रोपाई कर दें। ये तो बात हुई कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों का को प्रयोग करते समय हमारे किसान भाई और बहन किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है, अतः इनका प्रयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला है, राइजोबियम कल्चर से मिलने वाला लाभ बहुत हद तक उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, अतः किसी सरकारी या विश्वसनीय स्रोत से ही अच्छी गुणवत्ता का जैव उर्वरक ही क्रय करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग इनकी लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व ही कर लेना चाहिए। राइजोबियम कल्चर को सीधे रासायनिक उर्वरकों एवं खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों जैसे कीटनाशी, खरपतवार नाशी आदि के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार किसी साफ फर्श, अखबार, पॉलिथीन या बोरे पर ही करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से उपचारित बीजों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। जैव उर्वरकों से उपचारित बीजों को किसी साफ फर्श, पॉलिथीन या बोरे पर ही करें। इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई और बहन इन कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग अपनी फसलों में करेंगे तो निश्चित ही अधिक फसलोत्पादन कर कृषि विकास में सहायक होने के साथ साथ पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे।
1: कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, इस विषय पर खेती के बातें कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से श्रोता भी सुन रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। संध्या 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा कुमाऊनी लोकगीत कमलेश कुमार के स्वर में। शाम 5:15 पर युवा साथी युवावाणी कार्यक्रम सुनते हैं, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा हुनर को बनाएं रोजगार, साइंस का संसार, आज का इतिहास युवा साथी सुनेंगे। साथ ही प्रश्न मंच सुनिएगा, इसमें आज प्रतिभागी होंगे काजल बिष्ट, प्रवील सुयाल, प्रीति चौहान और अंकिता उपाध्याय। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस, योग से जोड़ों को कैसे स्वस्थ रखें, इस विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम प्रसारित होगा। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा, कलाकार होंगे अनूप जलोटा और तृप्ति शाकिया। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में तिमिल की खेती विषय पर। आज की सलाह लीजिएगा हल्दी और अदरक की खेती से आय अर्जन, इस विषय पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात 10:30 पर। आज रात 8 बजे लोकगाथा भनारी नैद का दूसरा भाग प्रसारित होगा। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। श्रोताओं को हम एक बार फिर बता दें, आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर चर्चा का विषय, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: Akashvani at 90.
1: हम आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोतों, भारतीय सिनेमा में कई ऐसे जाने माने निर्देशक हुए हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्हीं में से एक नाम है जाने माने निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में बड़ी और यादगार फिल्में दी हैं। 17 जून 1970 को जन्मे निशिकांत ने 17 अगस्त 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी बनाई फिल्में आज भी दर्शकों को उनकी याद दिलाती हैं। निशिकांत कामत ने अपनी फिल्मों के जरिए समाज की सच्चाई को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती के साथ उतारा। उन्होंने हर शैली में खुद को साबित किया। उन्होंने अपने निर्देशन में जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई उसमें उनका गजब का निर्देशन देखने को मिला। और उन्होंने शुरुआत की मुंबई मेरी जान से। निशिकांत कामत की ये पहली हिंदी फिल्म थी और ये साल 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट पर आधारित फिल्म थी। इसमें दिखाया गया था कि हादसे से प्रभावित आम लोग किस तरह उस सदमे से निकलने की कोशिश करते हैं। इरफान खान, के मैनन, माधवन और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपना शानदार अभिनय इस फिल्म में दर्शाया। और फिर उनकी निर्देशन में एक और फिल्म आई जिसने दर्शकों के बीच अच्छी खासी पहचान बनाई। फिल्म थी दृश्यम। अजय देवगन की ये सुपरहिट फिल्म थी और ये फिल्म निशिकांत कामत के करियर की भी सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती रही है। इस फिल्म की सस्पेंस से भरी कहानी और निर्देशन ने इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों की सूची में शामिल किया है। और फिल्म के हर दृश्य को निशिकांत कामत ने पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश की, जो कि बहुत सफल रही।

श्रोम माया नगरी या यूं कहिए मुंबई में हर कोई ढेरों सपने लेकर आता है और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था निशिकांत कामत के साथ। हर नौजवान की तरह निशिकांत का भी फिल्मों से बेहद लगाव रहा। उनका भी मन फिल्मों में बतौर हीरो बनने का ही था शुरुआत में, जो उन्होंने पूरा भी किया। साल 2004 में निशिकांत ने फिल्म हवा आने दे से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने बतौर अभिनेता काम किया। इसके बाद निशिकांत ने कुछ मराठी फिल्मों में भी अभिनेता के तौर पर काम किया। इनमें से एक थी सातच्या आत घरात फिल्म। इस फिल्म के लेखक भी निशिकांत स्वयं थे। फिल्मों से लगाव के चलते निशिकांत के अंदर का एक्टर फिर बाद में डायरेक्टर बनने की ओर बढ़ने लगा और जल्द ही उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी छलांग लगा दी। साल 2005 में बतौर निर्देशक मराठी फिल्म बनाई। ये फिल्म थी डोंबिवली फास्ट। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट करके निशिकांत कामत ने फिल्म इंडस्ट्री को एक सशक्त उसमें फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। इसके बाद तो जैसे निशिकांत कामत के अंदर का निर्देशक पूरी तरह खुल गया। उन्होंने अन्य भाषाओं की फिल्मों को निर्देशित करना शुरू किया। मराठी से उन्होंने शुरुआत की। 2007 में तमिल फिल्म को भी डायरेक्ट किया और साल 2008 में एक बार फिर वो हिंदी फिल्मों की तरफ लौटे। मुंबई मेरी जान इस फिल्म ने भी निशिकांत कामत को अच्छा खासा फेम दिया। हालांकि उनके अंदर अभिनेता बनने का जो ख्वाब वो संजोए हुए थे वो जिंदा था और उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग को जारी रखा। साल 2011 में उन्होंने हिंदी फिल्म 404 में एक्टिंग की। इसके बाद 2011 में ही जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म फोर्स को भी उन्होंने निर्देशित किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और निशिकांत कामत एक स्थापित निर्देशकों की श्रेणी में शुमार हो गए।

तो श्रोताओं, साल 2016 में निशिकांत कामत ने जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम में बतौर विलन लोगों की तारीफ बटोरी। इसके अलावा इरफान खान अभिनीत मदारी और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की फिल्म भावेश जोशी जैसी फिल्मों में भी निशिकांत ने अपने काम से, अपने निर्देशन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अपने छोटे से फिल्मी करियर में और अपनी छोटी सी जिंदगी में निशिकांत कामत ने अपने बेहतरीन निर्देशन और अभिनय का परचम लहराया। 17 अगस्त 2020 को वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए और छोड़ गए अपने करियर की वो बेशुमार फिल्में जिनके ज़रिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के फनकार थे जाने माने मशहूर निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, पेश है सदाबहार फिल्में की। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। सदाबहार तराने बेहद सुहाने, आइए चंद नगमों से सजाएं आज का सदाबहार फिल्मी गीत।

सुन रहे थे लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, फिल्म नूरी में जानिसार अख्तर के बोल और खयाम ने तर्ज बनाई थी। अगला गाना दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत है। फरिश्ते रंग बरसाते हैं, मौसम रक्स करता है। फरिश्ते रंग बरसाते हैं, मौसम रक्स करता है, जब उड़ते बादलों में हम तेरी सूरत बनाते हैं।

अब सदाबहार एक और फिल्म नगमा पेश कर रहे हैं। फिल्म है हाथ की सफाई। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। शब्दकार हैं गुलशन बावरा। संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। वादों पे एतबार देता है जिंदगी को सवार। चलो तेरे वादे पे करें एतबार। जिंदगी को तेरी नज़र से ही आओ सवार दें।

और अब सदाबहार फिल्मी गीत का अगला नगमा अब्दुल्ला फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, जब तक न आप आए उजाला न हो सका।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर मुकेश के युगल स्वरों में मधुमति फिल्म का गाना। शैलेंद्र ने इसे शब्द दिए हैं और सुरों में पिरोया है सलिल चौधरी ने। दिल बुरी तरह से धड़कता रहा, वो बराबर मुझे ही तकता रहा। रोशनी सारी रात कम न हुई, तारा पलकों पे एक चमकता रहा। छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा।

सदा बहार फिल्म गीत का आखिरी गीत ताजमहल फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी ने इसे स्वर दिया है। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत रोशन का।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न की 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारतीय ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हमारे आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है।

0: इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं कमलेश कुमार की गाई चांचरी। श्रोता, हमारी सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 87.3 मीटर अर्थात 1,602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन रहे हैं।

कमलेश कुमार की गाई सी चांचरी के साथ शैलस्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब एक नज़र हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स टाइम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही समय पश्चात संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा प्रश्न मंच। प्रतिभागी होंगे काजल विष्ट, प्रवेल सुयाल, प्रीति चौहान और अंकिता उपाध्याय। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:45। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस। और साथ ही साथ आप सुनेंगे योग से जोड़ों को कैसे स्वस्थ रखें विषय पर योग शिक्षिका श्रीमती मंजू बिस्ट से क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। संध्या 7:00 होगा कार्यक्रम ग्राम जगत। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इन धनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। आज रात्रि 8:00 सुनेगा लोकगाथा भनारी नैत का दूसरा भाग। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के विशेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

हमारी कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु। तत्पश्चात 6:10 पर आराधना कार्यक्रम के तहत सुनेगा कुछ भजन। आज की बात कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:40। प्रातः 6:40 प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। श्री रामचरित मानस गान पाठ का समय रहेगा प्रातः 7:10। प्रातः 7:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे अर्जुन कुमार के गाए कुछ लोकगीत। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 9:05 पर। कल सुबह 10:05 पर होगा कार्यक्रम सबरंग और 10:35 पर सुनेगा कार्यक्रम सुरबहार।

फौजी भाई फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनेंगे कल सुबह 11 बजे 11:30 पर सुनेगा कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर मेरी पसंद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना दिन में 12 बजे 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अर्पण। कल इस कार्यक्रम में सुनेगा सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के 12 वर्ष विषय पर श्री जे एस बोरा अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा मंडल से दीपा जोशी की बातचीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:15 पर 1:30 पर सुनेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1309वीं कड़ी। 2 बजे आप सुनेंगे उत्तराखंड के लोकगीत। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में कल जानकारी का विषय होगा सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती और जानकारी देंगे डॉक्टर पूरन सिंह मेहता। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम में और अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत कार्यक्रम के तहत। हमारी कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:05 पर शैलसर कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्जुन कुमार का गायन लोकगीत। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 5:15 पर 5:45 पर होगा कार्यक्रम उत्तरायण। भक्ति संगीत सुनेगा संध्या 6:41 पर 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। किसान भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। कल इस कार्यक्रम में सुनेगा खेती बचाओ अभियान रासायनिक खादों का संतुलन व न्यूनतम प्रयोग विषय पर क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। साथ ही साथ सुनेगा भेंट वार्ता सरकार के 12 वर्ष फसलों में कीट व रोग प्रबंधन विषय पर महेंद्र सिंह से की गई भेंट वार्ता। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में कल रात्रि 9:30 पर सुनेगा श्री वी एस एन कैंकर के नाटक हम लोग मुजरिम हैं का उर्दू नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। सबरस कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। ये थे हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

जो हमारे युवाओं के भविष्य और आत्मनिर्भरता से सीधे जुड़ा हुआ है। आज के समय में केवल डिग्री ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि कौशल और प्रतिभा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हर युवा के भीतर कोई न कोई विशेष हुनर छिपा होता है। ये हुनर कला, संगीत, विज्ञान, लेखन, हस्तशिल्प, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, डिजाइनिंग या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। बदलते समय के साथ साथ रोजगार के स्वरूप भी बदल रहे हैं। आज लोग अपने हुनर के बल पर घर बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल तकनीकों ने प्रतिभाओं को एक नया मंच दिया है। आज अनेक युवा अपने कौशल के माध्यम से स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। दोस्तों, साथ ही सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। यदि युवा अपने हुनर को पहचान कर उसे निखारे और लगातार सीखते रहे तो वो रोजगार पाने के बजाय दूसरों को रोजगार देने वाला बन सकता है। बस जरूरत है तो मेहनत की और सही मार्गदर्शन की। दोस्तों, आपकी कला आपके लिए अवसरों के द्वार खोल सकती है, इसलिए खुद के कौशल पर भरोसा रखें, उसे विकसित करें और उसे अपनी पहचान बनाएं। याद रखिए, आपकी कला आपको केवल रोजगार नहीं देती बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता भी दिलाती है। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। करते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय

0: लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक विज्ञान जगत की ओर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे एक ऐसी आधुनिक तकनीक की जिसने भौगोलिक जानकारी को समझने और उसका विश्लेषण करने का तरीका ही बदल दिया है। इस तकनीक का नाम है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या भौगोलिक सूचना प्रणाली। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहें तो GIS एक ऐसी कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी भी स्थान से संबंधित जानकारी को एकत्रित, संग्रहित, विश्लेषित और मानचित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये केवल नक्शा बनाने की तकनीक नहीं, बल्कि ये विभिन्न सूचनाओं को एक साथ जोड़कर उनका विश्लेषण करती है। आज GIS का उपयोग शहरी नियोजन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, परिवहन और जल संसाधन प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में तक किया जा रहा है। दोस्तों, अगर माने कि किसी क्षेत्र में बाढ़ या भूकंप आने की संभावनाएं हैं, तो GIS की सहायता से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और समय रहते बचाव कार्य शुरू किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्रों में GIS किसानों की भूमि की गुणवत्ता, फसलों की स्थिति और जल संसाधनों की जानकारी उपलब्ध कराता है। वहीं शहरों के विकास, जलापूर्ति और अन्य योजनाएं बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं में आज इसका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। साथ ही कई करियर विकल्प भी युवाओं के लिए उपलब्ध हुए हैं। दोस्तों, ये तकनीकें न केवल हमारा विकास करती हैं, बल्कि विज्ञान की प्रगति का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थी एक सूक्ष्म सी जानकारी GIS को लेकर। अब ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में प्रश्न मंच की तरफ। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम लोग करा रहे हैं प्रश्न मंच। इस प्रश्न मंच का विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों, इस प्रश्न मंच को कराने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो टीम, टीम ए और टीम बी। टीम ए की प्रतिभागी हैं प्रीति चौहान और अंकिता उपाध्याय, और टीम बी के प्रतिभागी हैं प्रबल सुयाल और काजल बिस्ट। तो चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न मंच की शुरुआत करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिएगा हमारे प्रश्न मंच को, क्योंकि इसके अंत में हम लोग पूछेंगे आपसे एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको हमें भेजना होगा। तो दोस्तों, प्रश्न मंच की शुरुआत करते हैं टीम ए के साथ। टीम ए, आप हमें ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
4: 21 जून।
3: जी, बिल्कुल सही जवाब। अब टीम बी, आप ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष 21 जून को योग दिवस घोषित किया था?
5: वर्ष 2014।
3: जी, बिल्कुल सही जवाब। टीम

0: आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि योग का जनक किसे माना जाता है?
1: महर्षि पतंजलि को।
0: जी बिल्कुल सही। हमारा अगला क्वेश्चन है टीम बी से। टीम बी, आप ये बताइए कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
1: संस्कृत भाषा से।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, आप ये बताइए कि संस्कृत में योग शब्द का क्या अर्थ होता है?
2: जोड़ना और मिलन।
0: जी बिल्कुल सही। टीम बी, आपके लिए अगला प्रश्न ये है, योग के प्रणेता किसे माना जाता है?
3: भगवान शिव।
0: जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है हमारा टीम ए से। टीम ए, आप ये बताइए कि महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित मुख्य ग्रंथ का नाम क्या है?
1: माफ करें, हमें जवाब नहीं पता।
0: जैसा कि टीम ए को इस प्रश्न का जवाब नहीं आता, तो इस प्रश्न को हम टीम बी को फॉरवर्ड करते हैं। टीम बी, आप ये बताइए कि महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित मुख्य ग्रंथ का नाम क्या है?
1: योग सूत्र।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अब टीम ए, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है, आप ये बताइए कि आधुनिक योग का पिता किसे माना जाता है?
2: टी कृष्णमाचार्य।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन टीम बी से हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था?
3: नरेंद्र मोदी।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, आप ये बताइए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था?
1: 21 जून 2015 को।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आपके लिए हमारा प्रश्न ये है कि अष्टांग योग के प्रथम दो चरण कौन से हैं?
1: यम और नियम।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा टीम ए से है, श्वास नियंत्रण की तकनीक को क्या कहा जाता है?
2: प्राणायाम।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आप ये बताइए कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
3: माफ कीजिए, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है।
0: जी कोई बात नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अब टीम ए से पूछेंगे। टीम ए, आप बताइए कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
1: पूरक।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल हमारा फिर से टीम बी से है। टीम बी, आप ये बताइए कि प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
1: रेचक।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है, प्राणायाम में सांस रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
2: कुंभक।
0: जी बिल्कुल सही। टीम बी, आप ये बताइए कि योगासन का क्या अर्थ है?
3: स्थिर और आरामदायक मुद्रा है।
0: जी बिल्कुल सही। टीम, आप बताइए कि हठ योग के अनुसार कुल कितने प्रमुख आसन माने गए हैं?
1: माफ करें, हमें इसका उत्तर नहीं पता।
0: जी कोई बात नहीं। टीम बी, आप बताइए कि हठ योग के अनुसार कुल कितने प्रमुख आसन माने गए हैं?
1: 84।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है। टीम ए, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है कि शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई की क्रियाओं को क्या कहते हैं?
2: षटक्रम या क्रिया।
0: जी बिल्कुल सही। टीम बी, आप ये बताइए कि मानव शरीर में ऊर्जा के कुल कितने चक्र होते हैं?
3: 7।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है, मनुष्य के शरीर का सबसे पहला चक्र कौन सा है?
1: मूलाधार चक्र।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आप बताइए कपाल भाति करने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है?
1: फेफड़े, श्वसन तंत्र।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा फिर से टीम ए से, किस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है?
2: शीर्षासन।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आप ये बताइए कि मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसको लचीला और स्वस्थ बनाने वाला सबसे प्रसिद्ध आसन कौन सा है?
3: भुजंगासन।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, आप बताइए योग करने के लिए दिन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है?
1: सुबह, ब्रह्म मुहूर्त।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आप बताइए योग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: मन और शरीर का संतुलन।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। आपसे हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संचालन भारत में किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
1: माफ करें, हमें इसका उत्तर नहीं पता।
0: जी कोई बात नहीं, ये इस क्वेश्चन को हम टीम बी को फॉरवर्ड करते हैं। टीम बी, आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संचालन भारत में किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
3: आयुष मंत्रालय।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से टीम ए से है। टीम ए, आप ये बताइए, पश्चिमी दुनिया में योग को लोकप्रिय बनाने वाले पहले भारतीय स्वामी कौन थे?
2: स्वामी विवेकानंद।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आप ये बताइए, दुनिया में किस देश में योग करने वालों की संख्या सबसे अधिक है?
1: भारत में।
0: जी बिल्कुल सही। टीम ए, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हर साल योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से कौन सा देश करता है?
4: भारत।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आप ये बताइए कि योग विद्या में आदि योगी किसे माना जाता है?
3: भगवान शिव को।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, आप बताइए, योग का सबसे पहला उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है?
2: ऋग्वेद।
0: जी बिल्कुल सही। टीम बी, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग को किस नाम से जाना जाता है?
1: अष्टांग योग।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न फिर से टीम ए से, योग में मानसिक शांति किसे करने से मिलती है?
4: ध्यान।
0: जी बिल्कुल सही। टीम बी, आप ये बताइए कि योग का अंतिम अंग क्या है?
3: समाधि।
0: जी बिल्कुल सही। टीम ए, आप बताइए, योग सूत्र में कुल कितने पाद हैं?
2: चार।
0: बिल्कुल सही। टीम बी, आप बताइए, योग सूत्र का पहला और दूसरा पाद कौन सा है?
1: समाधि और साधन पाद।
0: जी बिल्कुल सही। टीम ए, आप बताइए, योग सूत्र का तीसरा और चौथा पाद कौन सा है?
4: विभूति और कैवल्य।
0: जी बिल्कुल सही। हमारा अगला क्वेश्चन टीम बी से है। टीम बी, आप बताइए, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या रखी गई है?
3: योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
0: जी बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अब हमारे प्रश्न मंच की विजेता टीम का नाम घोषित करते हैं। हमारी विजेता टीम रही है टीम बी। अब इस कार्यक्रम प्रश्न मंच को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। तो जैसा कि शुरुआती चरण में हमने आपसे कहा था, हम पूछेंगे आपसे एक प्रश्न। तो हमारा आपके लिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वर्ष 2026 की थीम क्या है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर, तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये तो आपने सुना प्रश्न मंच। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ और डालते हैं नज़र आज यानी 17 जून को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य क्षेत्र में शामिल किया था। आज के दिन वर्ष 1855 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क की बंदरगाह में लाया गया था। वर्ष 1917 में आज के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज को अपना आवास स्थल बनाया था। दोस्तों, वर्ष 1970 में आज के दिन शिकागो में पहली बार किडनी प्रतिरोपण का ऑपरेशन किया गया था। आज के दिन वर्ष 2004 में मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थरों की खोज की गई थी। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2008 में देश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में कनाडा सरकार ने तमिल वर्ल्ड मूवमेंट संगठन को आतंकवादी समूहों की सूची में डाला था। 2021 में आज के दिन चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले तीन पुरुष चालक दल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये 5 वर्षों में देश का पहला क्रू मिशन भी था। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र आज हुए मुख्य व्यक्तियों के जन्म तथा निधन पर। आज के दिन वर्ष 1631 में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे मुमताज की याद में बनाया गया था उनका।

जन्म हुआ था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1973 में भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। वर्ष 1862 में आज के दिन भारत के पहले वॉइसरॉय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का निधन हुआ था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1674 में जीजाबाई का निधन हुआ था। वो शाहजी भोसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी की माता थी। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही। अब सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। हमारा कल का प्रश्न था, चित्तरंजन दास का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 5 नवंबर वर्ष 1870 को। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन अब्बासी, ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, एसएम जावेद गुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों कार्यक्रम युवावाणी में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों कार्यक्रम युवावाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान के संतोष कुमार कोटलिक नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से आपको जिगली भी रहे हैं। कुछ बातचीत, कुछ जानकारी और दगड़ पर कुछ कुमाऊनी और गढ़वाल लोकगीत। नवरो कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ बातचीत आप लोगों का कर लूँ और बात कर दूँ हमारे पृथ्वी बारे में। नवरो हमारे सौर मंडल का अगर हम बात करूँ तो एक पृथ्वी अस ग्रह छू जो कि सब ग्रहों में एक भल ग्रह मानी जा। और यहाँ हम देखूँ कि यतिक सुंदरता, यतिक प्राकृतिक सुंदरता जो छू बहुत भल छू। और सब वह ठुल बात यहाँ छू कि यहाँ जीवन जो छू संभव छू। हम और ग्रहों की बात करूँ तो वहाँ जीवन संभव ना हतिन, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह छू जहाँ की मनखी प्राणी कोई ले जीव जंतु यहाँ जीव। और ये सुंदरता बनाने में प्राकृतिक तो योगदान छुई दगड़ पर मनखियों के और पूरे प्राणी समाजों का योगदान छू। हम देखनु कि हमारे आसपास अख हरी भरी जंगल, हमारे पेड़ पौध, हमारे पहाड़, हमारे मैदान, हमारे नदी नाल, यूँ सब अपना अपना

दिशा में अपना अपना क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता का एक नई छटा देनी और एक नई दिशा दिखानी। दगड़ियों, हम देखने लाग रहे कि हमारे जो प्राकृतिक हरियाली जो हरी भरी जो हमारे जंगल छन वो बखतक दगाड़ में कम होने लाग रही, और हम देखनु कि हमारे जो उपजाऊ भूमि छो उले माठू माठ बखतक दगाड़ कम होने लाग रहे। हम देखनु कि पहली हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करी जाती, लेकिन आज बखतक दगाड़ में खेती जो छू कम होने लाग रहे। अगर हम हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूँ तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रक बहुत से उपजाऊ जो भाग छी, कृषि योग्य जो भाग छी, वो आज बंजर है गो। और बखतक का दगाड़ यह बंजरपन जो छू, यह बंजरक जो माप छू, वो बढ़ने लग रहे, कम नहीं होने लग रही। ये एक बहुत से कारण है सकनी। लेकिन दगड़ियों, अगर हमारे जो पृथ्वी छू, जो हमारे उपजाऊ भूमि छू में वो अगर माठू माठ बंजर होने लागली, तो एक दिन यह सहल कि हमारे पूरी पृथ्वी जो छू मरुस्थल बन जाली, और पूरे झाड़ झंकारी में हजाल, पूरे जंगो यो बन जाली। तो ये एक लीजिक मरुस्थली और सुख बटी निपटना लीक विश्व दिवस मनाए जाना ग्रो, और आज हम यह दिवस के मनाने लाग रही। तो इमें हम लोग उनके ध्यान धरना चाहिए कि हम लोग लोगों को जागरूक करूं और जमीन की जो छू बंजर नहीं करूं। अगर हमारे जमीन में हम खेती नहीं करने लग रहा है तो हम लोगों को यह बात का ध्यान धरना चाहिए कि हम लोग में फलदार पेड़ लगा सकूं या लोग कोई ल प्रकार पेड़ लगा सकूं। अगर हम लोग जमीन के बंजर धर लो तो एक बखत में क्यों हल, वो पूरा मरुस्थल बन जाल और उमें कोई ल प्रकार वनस्पति नहीं उग सके। हम लोग उनके चाहें कि हम लोग पानी जो स्रोत छे उनके उनर ध्यान धरूं और उनके सुकुण हवी बचाऊं। जैसे कि हम लोग उनके पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद नहीं करना चाहें, और बारिशक जो पानी छो वो इकट्ठे करना चाहें। वील क्यों हल कि हमारे पृथ्वी जो छू उमे नमी बनी रोली, और नमी बनी रोली तो हमारे पृथ्वी पर जो हरियाली छू वो बढ़ते रहो, वो कम नहीं होली। ये के अलावा हम लोगों के हमारे जो पृथ्वी की माट छू वीक स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों के प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए कि, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग अगर हम लोग कर लूँ तो वीक सब हमें ज़्यादा दुष्प्रभाव जो छू हमारे माट पर पड़ूँ, वो माटक सारे जो उर्वरा शक्ति छू खत्म कर दूँ और उन्हें जैविक तत्वों को खत्म कर दूँ। तो ये के लिए हम लोगों के चाहें कि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँ। ये कर अलावा लोगों को एक बार में जागरूक करूं, जैसे हम लोगों को भाषण दे सकूं, नुक्कड़ नाटक दिखा सकूं, या फिर स्लोगनों द्वारा ले हम लोगों को जागरूक कर सकूं कि हम लोग अपने जमीन की जो छू बंजर नहीं करो, और इमा अगर हम लोग खेत नहीं लगा लग रहा तो इमा हम लोग कोई ना कोई प्रकार का पेड़ लगा दूँ और एक मरुस्थल होने भी बचूँ। अगिल लाख लोगों का बातचीत करूँ, आओ कार्यक्रम में सुन लूँ नैन नाथ रावलक गाई यह लोकगीत।

0: सगळे लांब सोड नागराची नाही नाथ रावलत गाई यो लोकगीत.
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं.
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है.
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें. जागो ग्राहक जागो.
0: दगड़ियों कार्यक्रम को बढ़नो आगे न और सुनो. योग करवीर हम लोग का फिर जोड़ों को कतु स्वस्थ धर सकनु. एक बार में योग शिक्षिका श्रीमती मंजू बिष्ट जगड़ करी गई और क्षेत्र संकलित बातचीत. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक योग शिक्षिका श्रीमती मंजू बिष्ट जी से. और मंजू बिष्ट जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. अपना परिचय आप हमारे श्रोताओं को दीजिए.
4: मेरा नाम मंजू बिष्ट है. मैं एक योग शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ.
0: आपके जीवन में योग की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए.
4: मैं 24 साल की थी, तब से मुझे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी. धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं धीरे धीरे योगा के बारे में जानने लगी कि क्या योग मुझे ठीक कर सकता है, क्या योग से मुझे जो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या मैं इनको सॉर्ट आउट कर सकती हूँ. इसी जिज्ञासा हेतु मैंने MA जो है योग से किया और MA योग की डिग्री ली. लेकिन उस समय मुझे पता चला कि योग हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है. मैंने योगा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, मुझे जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको दूर किया. और इसलिए मैं सभी लोगों को संदेश देती हूँ मेरी तरफ से कि योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, ये हमारे लिए एक वरदान है.
0: आज हम देखते हैं कि हर कोई, हमारे भाई बंधु, हमारे जो भी दोस्त हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, जिसके कारण कभी उनके कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कंधों में दर्द, या फिर कभी गर्दन में दर्द, ऐसी परेशानियां उनको होती है. तो क्या योग से ये सारी परेशानियां दूर की जा सकती हैं?
4: जैसा आपने कहा कि आजकल हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, मैं मानती हूँ, मैं खुद अपने आप को देखती हूँ, अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ. ज़्यादातर टाइम हम लोग ऑफिसेज में अपना स्पेंड करते हैं या फिर हम अंदर बैठे रहते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से विटामिन डी भी नहीं ले पाते. जो आपने अभी कमर दर्द की बात कही या बहुत सारी चीज़ों की बात कही, मे बी रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, गठिया हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी फिजिकली फिट हम नहीं रह पाते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में होती है. लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप दवाई लेके इसको कम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा भी तो उपाय होना चाहिए कि आपको वो लंबी लाइफ, बहुत हेल्दी लाइफ जीने के लिए मदद करे. देखिए, हम एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं लेकिन वो रूट कॉज को तो ख़त्म नहीं करती है ना. जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इसकी तो कोई दवा ही नहीं है. और अगर मैं आंकड़ों की बात कहूँ तो लगभग 70 से 80% जो औरतें हैं उनको आर्थराइटिस है, गठिया है. और अगर हमारे पास लगभग 80 प्रकार का आपका आर्थराइटिस होता है, और बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है या कैंसर है, सो मेनी अदर थिंग्स. लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हद तक हम उसे पूरा अगर क्योर नहीं भी कर पाए हैं तो हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं जहां पे वो बीमारी है, उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं उसे, और उसको कम भी किया जा सकता है. ये तो है.
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जोड़ों के दर्द को योग से कम किया जा सकता है, या जोड़ों की जो भी परेशानियां हैं उनको योग से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है?
4: देखिए, सबकी तकलीफ अलग अलग होती है. जोड़ों का दर्द, किसी का बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सूजन आने लग जाती है, या किसी की शुरुआत हो रही है, या किसी को बहुत लंबे समय से जोड़ों का दर्द है. 30 साल के जो आजकल युवा हैं उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारी गठिया की प्रॉब्लम हो रही है. वो हमारी जीवन शैली है, क्योंकि हम जंक फूड खा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं. लेकिन देखिए, योगा अगर हम कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि अगर आप योग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एज फैक्टर को देख के योग करना होगा. हम बिल्कुल ब्लाइंड होके योग नहीं कर सकते, क्योंकि आज शायद आसनों को ही, बहुत कठिन एक्सरसाइज है उनको ही योग में सम्मिलित किया गया है, लेकिन योग इससे बढ़कर है। योग में आप बहुत सारी चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं योगिक डाइट की बात करूंगी, क्योंकि हम ऑर्थराइटिस की बात कर रहे हैं ना। अगर ऑर्थराइटिस के पेशेंट को सबसे पहले तो खट्टे से दूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा अचार है, तला भुना है और बहुत ज्यादा जंक फूड है, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एक हेल्दी योगिक डाइट को सम्मिलित करना चाहिए, और सबसे ज्यादा सात्विक आहार को, क्योंकि हम तीन आहारों की बात करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है उबला हुआ खाना। जितना ज्यादा हम सात्विक आहार कर सकें, हम लौकी अपने उसमें सम्मिलित करें, हम बाकी चीजों को जो वेजिटेबल्स हैं, जो अदर वेजिटेबल्स हैं जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, जिनमें आयरन है, ऐसी मैग्नीशियम है, ऐसी सब्जियों को हम अपने उसमें सम्मिलित करें, और फिर हम इसके साथ साथ कुछ योगासन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ब्लाइंडली हम नहीं किसी चीज को फॉलो कर सकते, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हम सहज योग कर पा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि दर्द रहता है, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है। अगर आपको रूमेटाइड ऑर्थराइटिस है या सो मेनी अदर जो ऑर्थराइटिस है, 80 टाइप के मैंने बताए आपको ऑर्थराइटिस, अगर वो हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम कौन सा योग करें। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम पे ध्यान देना चाहिए।
0: वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जोड़ों के दर्द के लिए कौन कौन से योग, कौन कौन से आसन जो है बहुत अच्छे हैं।
4: हाँ, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमें सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम हम जब कर रहे हैं, अपनी अंगुलियों को फैलाएं और फिर अंदर की

0: तरफ ले जाएं, फिर अपने पंजे को फैलाएं, फिर अंदर की तरफ ले जाएं। और ऐसे ही छोटे छोटे व्यायाम हम करेंगे, जैसे अगर हम पैरों का व्यायाम कर रहे हैं तो हम सीधे पैरों को फैला लें। और इसमें श्वास और प्रश्वास का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम पैरों के पंजों को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो सांस छोड़ें, और अगर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग करते हुए सांस को अंदर की तरफ लें। इसके अलावा जो बाकी व्यायाम है उसमें धनुरासन है जो कर सकते हैं, उसमें ताड़ासन है, उसमें आपका चाइल्ड पोज है जिसको हम बालासन कहते हैं, वज्रासन में बैठ के आगे की तरफ झुकना, और जितनी देर आप झुक सकते हैं सांसों के साथ, आपने झुकते हुए सांस को छोड़ना है और फिर नीचे ऊपर उड़ते हुए सांस को लेना है। अगर हम सांसों के साथ, ऐसी बहुत सारे व्यायाम है, हम हलासन की बात कर सकते हैं, हम ताड़ासन की बात भी कर रहे थे, हम वृक्षासन की बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी हमने आपने देखा होगा बटरफ्लाई आसन जिसे तितली आसन कहते हैं, वो भी जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है।
1: सूर्य नमस्कार को आज हम कहते हैं कि सारे योग सारे आसन सूर्य नमस्कार में आ जाते हैं, तो सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए और कैसे उसके हमें सही फायदे हो सकते हैं इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सूर्य नमस्कार को लोगों ने मतलब एक ऐसा पैटर्न बना लिया है कि कौन कितनी फटाफट सूर्य नमस्कार कर सकता है, बल्कि ये ठीक नहीं है। अगर किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारे शरीर की, तो हमें धीरे धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करनी होती है। उसकी 12 पोजेज होती हैं आप जानते ही हैं, आप 12 पोजेज जब कर रहे हैं तो आपको, इसको बोलते हैं विन्यास योग, यानी कि एक पोज को हम जब दूसरी पोज से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में हम कितनी श्वास ले रहे हैं कितनी श्वास छोड़ रहे हैं ये कनेक्ट करता है, श्वासें ही कनेक्ट करती हैं एक पोज को दूसरी पोज के साथ। तो हमें इसे धीरे धीरे करना चाहिए, एक बार में हम 3 इसके स्टेप कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे हम 12 स्टेप तक जाएंगे, एकदम हम 12 स्टेप ना करें। और अगर हम 12 स्टेप कर रहे हैं तो धीरे धीरे 12 स्टेप को हम 3 बार कर सकते हैं, इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे धीरे बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, आप पहले इस पे ध्यान दीजिए कि मेरी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या मैं सहज योग कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए श्वास लेते हुए, अगर आप इसको एक पोज में आ रहे हैं, अगर आप पहली पोज होती है कि आप अपने दोनों हाथ जोड़ के पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उस समय आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आगे आ रहे हैं तो आप सांस छोड़ेंगे, ऐसी जब आप झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, और जब आप ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़ेंगे। इसकी जो 12 आपके योगासन इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ये योगासन साइंटिफिक योगासन है। अगर हम इसको श्वास प्रश्वास की सही गति के साथ करें, धीरे धीरे करें, तो ये हमें बहुत फायदा दे सकता है, मतलब इसको तेजी से करना आवश्यक नहीं है।
1: आप हमें ये बताइए कि योग करने के लिए उत्तम समय कौन सा होता है?
0: देखिए, हमारी उठने की आदत पे निर्भर करता है कि हम अपने शरीर को कितना टाइम दे रहे हैं। आज भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, लोग रात को 12-12 बजे तक मीटिंग्स में लगे रहते हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रात को टाइम से लोग नहीं सो पाते। देखिए, अगर मैं योगा के हिसाब से बोलूं, महर्षि पतंजलि ने तो योग करने का जो टाइम दिया है वो तो एक फिक्स टाइम है ना, कि 4:24 में आप प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाइए। 4:24 में हमें प्राणायाम करने चाहिए, या फिर हम जो भी सत्क्रिया करते हैं, आप जानते हैं ना कि नौली है, बस्ती है, धोती है, त्राटक है, जो भी हमारी प्रोसेस होती है, 6 क्रियाएं होती हैं हमारी मेनली, और उसी में सत्क्रिया में हमारा कपालभाति भी आता है। इसका जो एक आइडियल टाइमिंग बताई गई है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बताई गई है, 4:24 के।
1: आगे आप हमें ये बताइए कि योग करने के लिए हम लोगों को अपनी दैनिक क्रियाओं के साथ कैसे करना चाहिए?
0: देखिए, अगर आप योग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो नित्य क्रिया होती है उससे हमें निवृत्त हो जाना चाहिए। आप सुबह उठिए, हमारा सलाइवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रात का सलाइवा है। हाँ, रात को सोने से पहले मैं ये जरूर कहूँगी कि ब्रश करके सोना चाहिए, रात को ब्रश करना सुबह ब्रश करने से ज़्यादा अच्छा है, तो रात को ब्रश करना चाहिए। और उसके बाद जब आप सुबह उठ रहे हैं तो नित्य क्रिया से पहले निवृत्त हो जाइए। उसके बाद अगर आप स्नान करना चाहते हैं, देखिए ये आपकी इच्छा है कि आप पहले स्नान करना चाहते हैं या बिना स्नान करे ही आप योग करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप नहाने के बाद ही योग करेंगे, क्योंकि स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो कई लोग उसके बाद नहाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, जब आप पानी पी रहे हैं तो उसके बाद थोड़े टाइम

0: अगर आपने लिक्विड डाइट ली है या आपने पानी पिया है तो थोड़ी देर आप वेट कीजिए। अगर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, योग के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो वो 4 बजे उठ जाएं। उसके बाद निवृत्त होके सबसे पहले देखिए हमें सत्क्रिया करनी चाहिए। योग में हम सीधे आसन नहीं करते, योग का एक नियम होता है कि पहले आप सत्क्रिया करेंगे, फिर आप आसन करेंगे, फिर आप प्राणायाम करेंगे। अगर कोई इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकता है तो इसमें कुछ समय के लिए आप सत्क्रिया का कोई एक हिस्सा ले लीजिए। उसमें आप कपालभाति ले सकते हैं, वो भी सत्क्रिया का हिस्सा है। उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या नेति क्रिया होती है, नेति के बाद कपालभाति करना चाहिए। ये भी एक नियम है कि पहले हम नेति करें, जल नेति करें, क्योंकि सूत्र नेति तो आप किसी एक्सपर्ट के सामने ही करनी चाहिए। जल नेति बहुत सरल उपाय है, हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना कपालभाति अगर करना चाहिए, ये 2 सत्क्रिया आपकी हो जाती है। उसके बाद आप अपने आसन कीजिए, और आसन जैसा मैं बोल रही हूँ कि अपनी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करने हैं, दूसरे को देखते हुए हमें योग नहीं करना। हमारा शरीर जो हमसे कहता है, हमारा शरीर जो हमें एक सलाह देता है कि किस स्तर तक हम कौन सा आसन कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए। और उसके बाद हमें थोड़ा प्राणायाम जरूर करने चाहिए। ये एक योग की प्रोसेस होती है जो कि हम कर सकते हैं।
1: आप आगे हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जैसा हम देखते हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं शारीरिक काम है बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे खेतों में काम कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं या उन्होंने गाय पाली है, लेकिन फिर भी आज देखा जाता है कि ग्रामीण लोगों में भी जो है जोड़ों के दर्द की परेशानी सामने आती है। तो क्या ग्रामीण लोगों को भी रोज के काम है उसके साथ में योग करना जरूरी है?
0: बिल्कुल, योग करना बहुत जरूरी है। देखिए पहले जो गांव की लाइफ होती थी ना, वो बहुत ही सीधी सादी होती थी। आज अगर आप गांव की बात करते हैं तो मैं ये इनकार तो नहीं कर सकती कि गांव के लोग भी अब मॉडर्न चीजों को अपना रहे हैं। बहुत अच्छे घर हैं गांव में भी, वो लोग भी खेतों में काम करते हैं। पहले जैसा वातावरण तो नहीं है, क्योंकि वो जो आजकल जो फसल उगाते हैं ज्यादा हम केमिकल यूज कर रहे हैं, वही खाना हमारे अंदर जा रहा है। जमीन की जो एक फर्टिलिटी थी, एक उर्वरा शक्ति थी, वो कम हो गई है। तो लोग आजकल ज्यादातर केमिकल से जो खाते हैं वो यूज कर रहे हैं। भले ही वो लोग बहुत ज्यादा शारीरिक वर्क करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी रूप में अगर वो जो भोजन कर रहे हैं उससे कुछ न कुछ परेशानियां तो होती ही हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए सबसे पहले तो योग तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो गाँव के हों चाहे वो शहर के हों, सबने योग का एक टाइम होना चाहिए, योग सबने करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे अब एग्जाम्पल्स हैं कि गांव के लोगों को में भी शुगर हो रहा है, गांव के लोगों को भी पैर की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि औरतें भले ही वहां काम करती हैं लेकिन औरतें अपने खाने का ध्यान नहीं रखती। वो इतनी ज़्यादा शारीरिक वर्जिश करती हैं, लेकिन देखिए अगर हम शारीरिक वर्जिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ वैसी डाइट की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो उनको यौगिक डाइट पर ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि औरतों में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है गांव की औरतों में, क्योंकि ज़्यादातर औरतों से ही कहा जाता है कि घर का सारा काम औरतें करेंगी, आपने रसोई का काम औरतों ने ही करना है, कपड़े धोने हैं, बाहर का काम करना है, खेत का काम करना है, बच्चों का काम करना है। लेकिन जहाँ योग हमें एक चीज़ सिखाता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो घर में जो लोग हैं, जो पुरुष वर्ग है या फिर जो छोटे बच्चे 14 या 15 साल के बच्चे हो गए, जो बड़े बच्चे हो गए जिनको अब देखभाल की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में अपने घर की महिलाओं के साथ अगर मिलजुल कर काम करें तो थोड़ा सा काम का बोझ उनके ऊपर कम पड़ेगा, जिससे वो अपने लिए योग के लिए टाइम निकाल सकती हैं।
1: बहुत अच्छी बात है आपने हमारे श्रोताओं को बताई। कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी जिससे वो आपकी बातों से कुछ न कुछ प्रेरणा लें और कुछ न कुछ फायदा उनसे हो?
0: मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि हमारा शरीर बहुत अमूल्य है हमारे लिए। क्योंकि देखिए धन हम फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन शरीर अगर एक बार खराब हो गया तो फिर दूसरा स्वस्थ शरीर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अपने आप से प्यार करें, योग को टाइम दें, योग को अपने जीवन में बिल्कुल सम्मिलित करें। क्योंकि अगर निरोगी रहना है, लंबी जिंदगी चाहिए, स्वस्थ जिंदगी चाहिए, खुशी के साथ जीना चाहते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो योग को दिनचर्या में सम्मिलित करें, योग करें और निरोग रहें।
1: बहुत अच्छी सलाह आपने हमारे श्रोताओं को दी, बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे श्रोताओं को बताया।

0: मंजू जी, मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि अगर हमारे सुनने वाले श्रोता आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो जरूर उनको इससे कुछ न कुछ फायदा होगा, कुछ न कुछ प्रेरणा उनको इससे मिलेगी। आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: दगड़ियोला हम सुन लागराची योग करवेर हम अपन जोड़ों दर्द को कसिक दूर कर सकनु और अपन जोड़ों को कसिक स्वस्थ धर सकनु। एक बार में जानकारी देने लागराची श्रीमती मंजू बिष्ट जो कि एक योग शिक्षिका छी। और अब कार्यक्रम को बढ़नु आघिन और सुननु ललित चंद पांडे गाई यो लोक गीत।

रगड़ेला हम सुन लग रहा छे ललितचंद पांडे गाइये लोकगीत। और अब कार्यक्रम को बढ़ो आगिल और कुछ बातचीत आप लोगों तरह करूँ। दगड़े अजाल गर्मी के बखत छो और गर्मी के बखत में हम लोग देखनू कि हमार जो विद्यार्थी नानतीन छी स्कूली जो नानतीन छन उन्हें जी की अब बहुत महत्वपूर्ण बखत हूँ कि लेकिन यह बखत में उनर ग्रीष्मकालीन अवकाश उनर है रखना और यह बखत में वो बिल्कुल शांत हवेर और मौज मस्ती करनी छुट्टियों में कोई घूमू तो जानी या फिर कोई पिकनिक में जानी या फिर कोई अपने रिश्तेदारों घर जानी तो यह वक्त में वो पढ़ाई बटी थोड़ो उनको बोझ कम लागू। तो यह वक्त में अगर आप लोग कोई यश प्रकारक काम करण चाचा जैक जगह आपको स्कूल वक्त में टाइम नहीं मिल सकन वक्त नहीं मिलन तो यह वक्त बहुत भल हो आप लोग ने जी कि आप स्कूली पढ़ाई हवे अलावा कोई ले काम करना जैसे कि खेलकूद करण चाहिए वक्त में खेलकूद में रात्रि व्याव आप लोग कोई ले गेम आप खेल सकता कोई ले खेल आप खेल सकता जहल कि आप शारीरिक विकास तो हूँ दगड़ पर मानसिक विकास ले आप हूँ ये दगड़ पर जो पढ़ाई छू पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ चैन इमें आप लोग मज़ेदार तरीक़े पढ़ाई कर सकता जैसे कि रोज 30 मिनट तक कहानी या किताब पढ़ सकता कहानी वाली किताब पढ़ भी आप दूसरे को सुन सकता जैल कि आप भाषा का विकास हो और ये के अलावा रोजक 5/10 शब्द अंग्रेजी सीख सकता जैल कि हमार अंग्रेजी भाषा जो छू उ मजबूत बनेगी। ये के अलावा डायरी लिखना आप सीख सकता डायरी में आप हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो तो आप दिन भर में जो ल काम करने लग रहा था ब्याल के सितर हमें पहली आप डायरी में 8/10 लाइन उमें लिख सकता और उमें आप दिनचर्या बारे में आप लिख सकता ये के हॉल कि आप लोग न भाषा का विकास हॉल और आप लोगों को नई नई शब्द सीखूँ तो इमें मिला। ये के अलावा डांस करण गिटार सीखण खाने बनाण या फिर कोई ले काम यश जगह आपको भल लागू दगड़ पर आप घर में जो ले ठूल बुजुर्ग छन जो ले दादा दादी आप नाना नानी आप उन्हों बटिक आप कहानी सुन सकता पुराण कहानी कहावत सुन सकता घर परिवार में धरक जो काम हनी छोट मोट कामों में उन्हें मदद कर सकता क्राफ्ट वर्क आप सीख सकता। ये के अलावा जो नानतिन हमार यो बखत में अपन गाँव घर जरी तो गाँव घरों में जबीर जो भी प्राकृतिक सुंदरता छू गाड़ भीड़ नौ गधियार छन वहाँ जबेर उनर अनुभव आप ली सकता तो यह प्रकार अपन जो छुट्टी छन इनन का आप खूब मौज मस्ती दगा बीता सकता तो यह हमारे जिक हमार विद्यार्थियों जिक बहुत भल बखत छू तो यह बखत में बिल्कुल खुश हबेर निश्चिंत हबेर आप यो दिनों को बिताओ और खुशी खुशी आप जो छू छुट्टी बितावेर अपने स्कूल में बाद में अपने स्कूल फिर से आप ज्वाइन करो। तो दगड़ियों अगिल आप लोगों का बातचीत करो आओ कार्यक्रम में सुन लू लता पांडे और गंगा खुलवे गाई ये लोकगीत।

दौड़े लम सोना रची लता पांडे और गंगा खुल भी गई ये लोक गीत। दौड़े हमार जो युवा वर्ग छो उन यो वक्त में विशेष ध्यान उनर धरण छे, उनमें उनर घरवाल छन, उनर माँ बाप छन या फिर उनर जुले अभिभावक छू, उनन हमर जुले युवा वर्ग छू गुणा मतलब छू कि 11-12 साल बटिक 30 सालक या फिर 20 सालक उम्रक जो नानतीन छन उनर विशेष ध्यान हमर धरण छे कि लेकिन हम देखण लाग रही कि बखतक दगड़ पार युवा वर्ग जो छू नश में बहुत ज़्यादा लिप्त होने लाग रहा। और कोई तो हमारे तू अपना आदत खराब कर लेना लागरो कि पूरा जीवन एक खराब हो जाने लागरो। हम देखनू कि आज दिन प्रतिदिन नश में सब लोग अपना आदत खराब करने लाग रही, बहुत से ज़्यादा लोग अपना आदत खराब करने लाग रही। हमर पर्वतीय क्षेत्र का अगर हम बात करूँ तो आंकड़ों के अनुसार दिन प्रतिदिन यूँ आंकड़े बढ़ते जाने लाग रही। तो ये क्लिजिक हमर जो घर में सयाण छन उनन की यह बात का ध्यान धरण छे, उनर नानतिन कोई गलत राह पर तो नहीं चलने लाग रहा है, कोई प्रकार का नस तो नहीं करने लाग रहा है। अगर यस पाई जा तो उनन के प्यारल समझे बुझे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश हम लोग उनके करण छे और उनर जो उज्ज्वल भविष्य छो उगो बचाने की कोशिश करण छे कि लेकिन यो वक्त में कि हूँ कि पूरा जीवन यो उम्र पर निर्भर करूँ। अगर हमर यो उम्र बखत खराब हो गई या फिर यो उम्र हमारे खराब हो गई तो पूरा जीवन हमारे खराब हो जाए कि लेकिन कोई ले मनखी जो छू बुढ़ापा में अवेर गलत काम नहीं सीखन, यही उम्र में अवेर गलत काम सीखूँ। तो यह भगत पार हमार नानतिनल जी बहुत जरूरी हूँ सही रास्ते पर उनको ल्याण, सही उनर मार्गदर्शन करण और बहुत भल उनर देखभाल करण और बखत बखत पार उनर काउंसलिंग करण। तो दगड़ियों आप लोगों ने तो यही कौन छो अगर आप घर में ले युवा नानतिन छन तो विशेष ध्यान उनर धरो और उनर भविष्य के बनाओ। आगे आप लोगों ने का बातचीत करो तो आओ कार्यक्रम में सुन लू जे एस धपोला गाई यो लोक गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य जारी। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्वार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर चमोली एवं चंपावत में रन फॉर योगा के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि SIR के तहत मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। डॉ जोगदंडे ने बताया कि अब तक प्रदेश के लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। 6 जिलों में प्रपत्र वितरण का कार्य 99% तक पूरा हो चुका है। वहीं अन्य जिलों में भी अभियान तेजी से चल रहा है और अगले 1-2 दिनों में वितरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
6: जो प्रगति प्राप्त हुआ है 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल है। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है, और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमेरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1-2 दिवस के भीतर जो भी शेष गन्ना प्रपत्र वितरण का कार्य

0: होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गन्ना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे उन सभी गन्ना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
1: डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन कर उन्हें निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति को दूर किया जा सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से समय पर अपने गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की अपील की है। राजधानी देहरादून स्थित रिस्पना को नया जीवन देने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त मुहिम तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने राजीव नगर क्षेत्र से रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर सौरभ थपलियाल तथा मुख्य नगर आयुक्त आलोर कुमार पांडेय भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सफाई कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून से पूर्व रिस्पना नदी की व्यापक सफाई सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे वर्षा काल में जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे तथा नदी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।
2: इस संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने आज 12 जेसीबी और लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। प्लस साथ ही इस रिवर के रिजुविनेशन को लेके हम लोग एम्बिशियस तरीके से ये ट्राई करेंगे कि इसे वापस से जो एक पूर्व में भी इस तरीके का जो अभियान किया गया था तो उसे बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्राउंड पे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी के पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालिक एवं व्यवहारिक कार्य योजना तैयार कर चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश भर में योग के उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली और चंपावत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ आज रन फॉर योगा कार्यक्रम के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में स्कूली बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। चमोली जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित दौड़ को पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए निरोग रहना आवश्यक है, निरोग रहने के लिए योग जरूरी है।
4: योग सप्ताह के अवसर पर रणपुर योगा कार्यक्रम का जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम खेल विभाग के सहयोग से किया गया और हमारे सीनियर सिटीजन से लेके छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे भी इस दौड़ में दौड़े और उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर दो बालिकाओं के द्वारा योग का भी बहुत अच्छा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। एक संदेश पूरे जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, चमोली से जो स्वस्थ रहने के लिए, योग को अपनाने के लिए, खेल को अपनाने के लिए जो दिया गया उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता।
1: जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. श्रवण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए 1 जून से जगह जगह योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर चंपावत में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड तथा जिला प्रशासन चंपावत के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस लाइन से गोरल चौड़ तक आयोजित रन फॉर योगा जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्व प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई तथा युवाओं से नशे से दूर रहकर योग एवं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि योग हमारी पुरातन यौगिक संस्कृति एवं परंपरा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है।
5: देखिए योग जो है हमारी बहुत ही पुरातन यौगिक परंपरा है जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और जिसको बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में आज हमारा आदर्श जनपद चंपावत में पुलिस लाइन से श्री गुज्जू के इस मैदान पर एक मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया गया था जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो तीन प्रकार के योग की बात की गई है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्मा कर रहे हैं, दैट इज विटनेसिंग द गॉड हेड, यानी कि ईश्वर को जोड़ते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो उसी को योग कहा गया, योग कर्मसु कौशलम।
1: हरिद्वार जिले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आज से विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का आयोजन आगामी 20 जून तक किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि के अनुसार शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर नोडल एवं सहायक अधिकारियों की तैनाती कर कार्यक्रमों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किए जाने पर जोर दिया। साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थलों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं विकासखंड कार्यालयों सहित प्रमुख स्थानों पर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने को कहा। इन शिविरों में आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण एवं लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर तक यानी 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य जारी। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्वार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चमोली एवं चंपावत में रन फॉर योगा के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

तृप्ति शाक्य की गाई सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में एसआईआर अभियान का अंतर्गत गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन को कार्य तेजी से जारी। लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचे। देहरादून में रिस्पना नदी का पुनरुत्थान और सफाई अभियान का तहत पिछला 3 महीना बटे नदी में लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाई गए। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन में जन सहयोग पर जोर दे और हरिद्वार जिला में सरकार की योजनाओं को लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों को आयोजन करे जानो छ। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का अंतर्गत गणना प्रपत्रों का विवरण और सत्यापन का कार्य तेजी से चलनो छ। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि एसआईआर का अंतर्गत मतदाता सूची थे अधिक शुद्ध बनाण खूण घोर घोर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करे जाना चिन। डॉ. जोगदंडे ने बताया कि अब तक प्रदेश का लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके छे। 6 जिलों में प्रपत्र वितरण कार्य 99% पूरा हो चुके। वही अन्य जिलों में भी अभियान तेजी से चलाए जाना चिन। आने वाला 1-2 दिनों में विवरण कार्य पूरा करे जाला।
1: अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, खरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल है। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमेरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गन्ना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गन्ना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे उन सभी गन्ना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
0: डॉक्टर जोगदंडे ने बोली कि मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन कर उन्हें निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जालू, जहाँ से मतदाता सूची में कै भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति थे दूर करे जा सकू। उन सभी मतदाताओं बटे बगत पर अपना गणना प्रपत्र भोरी कर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी थे उपलब्ध कराने

0: की अपील करी छे। ये बीच चमोली जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR का अंतर्गत 3 मतदाता मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का 100% वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य मात्र 8 दिनों में पूरा कर लिए गए। जिला प्रशासन ने ये थे जन सहयोग और BLO की मेहनत को परिणाम बताई छे। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमारन बताए कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बूथ लेवल अधिकारियों की मेहनत बटे ये उपलब्धि हासिल हुई। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ का बूथ संख्या 133 झींझी और 138 पाणा तथा विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग का बूथ संख्या 38 कोलीमा गणना प्रपत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन 100% पूरा कर लिए गए। जिला अधिकारी ने संबंधित BLO और सहयोग करण वाला मतदाताओं थे बधाई देंदा वे बोले कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करण को मुख्य प्रयास है। उन सभी मतदाताओं से सहयोग बनाए रखण और अन्य BLO थे भी अभियान में तेजी लाने का निर्देश दें। देहरादून में रिस्पना नदी का पुनरुत्थान और सफाई अभियान थे जिला प्रशासन और नगर निगम तेज करयाली। बस के आल से पहले नदी थे स्वच्छ और अविरल बनाण खुण युद्ध स्तर पर अभियान चलाई जाना छिन। एक कड़ी में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहानन आज महापौर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे का दगड़ी राजीव नगर क्षेत्र में रिस्पना नदी पर चलना सफाई कार्य को निरीक्षण करें। उन मौके पर सफाई अभियान की प्रगति को जायजा लेंदा वे आवश्यक दिशा निर्देश दें। जिलाधिकारी ने बोली कि बसग्याल से पूर्व रिस्पना नदी की व्यापक सफाई प्रशासन की प्राथमिकता छ ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहो और नदी संरक्षण का प्रयासों थे मजबूती मिलू।
1: संबंध में हमारा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान्स बनेंगे कि विजिबल चेंजेस कौन कौन से लाए जाने हैं। मानसून से पहले के जो हमारी प्री मानसून तैयारियां हैं उसमें हमारे 12 से 15 जो ब्रिजेज हैं वो PWD को हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें फंड्स दे दिए। सिमिलरली इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी फंड्स दिए गए हैं ताकि रिवर के चैनलाइजेशन के वर्क को करके मिटिगेशन किया जा सके। और अभी जो नगर निगम के एफर्ट्स हैं वो भी इसी लाइन पे हैं कि बिफोर मानसून हम बस्तियों को और अपने लो लाइंग एरियाज को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं और कैसे गार्बेज जो अंदर पड़ा हुआ है उसे निकाल के रिवर को क्लीन कर पाते हैं।
0: ध्यान देने वाली बात है कि नगर निगम द्वारा रिस्पना तह स्वच्छ बनाण खुण मार्च महीना बटे विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाणु छ। यहाँ का तहत अब तक लगभग 17,000 मेट्रिक टन कूड़ा हटाई जा चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट कह रही थी कि नदी थे कूड़ा घर नहीं बनाए जालू और नदी में गिरण वाला अन उपचारित नालों का उपचार की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही करे जाली।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: पौड़ी जिला का विकास खंड पाबू का खुड़ेश्वर मैदान में आज जिला स्तरीय जल उत्सव 2026 को शुभारंभ करेंगे। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनोवेशन अथॉरिटी सारा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावतन करी। ये अवसर पर डॉ. रावतन बोली कि जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका छ। उन बोली कि प्रदेश का पारंपरिक जल स्रोतों नदियों गाड़गदेरा नौला और धारा राज्य की अमूल्य प्राकृतिक संपदा छ ज्यां थे संरक्षण बगत की आवश्यकता छ। ओन बोली की बदलता जलवायु परिस्थितियों और बढ़ती जल आवश्यकताओं थे दिग्दावे जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन खुण राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर कार्य करने छ। साथ ही स्थानीय समुदायों महिला समूह और युवाओं की सहभागिता बटे यू प्रयासों थे और अधिक प्रभावी बने जा सकदु छ। ये दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों से स्वच्छता अपनाण खुण ज्यादा से ज्यादा डाला बूटा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनो योगदान देने को आह्वान करी। हरिद्वार जिला में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से आज बटे जन कल्याणकारी शिविर आयोजित करे जाना छिन जो 20 जून तक लगाए जाला। यूं शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी एक ही छत का तौल उपलब्ध होली। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित संबंधित अधिकारियों थे शिविर को सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दें। उन बोली कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यूं शिविरों को व्यापक प्रचार प्रसार बिंडी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करे जाओ। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाला जख विभिन्न सरकारी योजनाओं का तहत पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण करे जालू और ऊंथे योजनाओं का लाभ प्रदान करे जाला। जिलाधिकारी ने अधिकारियों थे लाभार्थियों की सुविधाओं को विशेष ध्यान रखदा तथा शिविरों की प्रगति की नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को निर्देश दिया छिन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहली नैनीताल और चमोली जिला में योग थे लेकर उत्सुकता देखने को मिलने चाहिए। आयुष विभाग द्वारा दो जिलों में रन फॉर योगा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जहां स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, एनसीसी कैडेट्स और आम नागरिकों बढ़ चढ़कर भाग ले। नैनीताल का मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम को शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहन पाठकन हरी झंडी दिखाकर कैरी। वहीं चमोली का स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ को शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन कैरी। ये अवसर पर छात्रों द्वारा योग प्रदर्शन भी करेंगे और प्रतिभागियों योग का प्रति जागरूकता और फिट इंडिया को संदेश दे।
3: मालिया है, हम योगा दिवस के लिए यहाँ से दौड़े थे और यहाँ से हम तिकोनिया तक दौड़े थे और फिर हमें प्राइज भी मिले। हम ये संकेत दे रहे थे कि योगा फिटनेस हमें करना चाहिए, फिट रहना चाहिए अपनी बॉडी में।
4: आज हम यहाँ दौड़े योग दिवस पर। योगा हम सबको करना चाहिए। स्टेडियम की तरफ से तिकोनिया तक लेके गए, इसमें हमने रनिंग करी और योग सबको करना चाहिए। आपका बॉडी फिट रहती है, स्वस्थ रहती है।
0: ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर पर राज्य का विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित करे जाना चाहिए। यहाँ का द्वारा लोगों से ज्यादा संख्या में योग से जुड़ने की अपील करे जानी चाहिए। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में SIR अभियान का तहत गणना प्रपत्र वितरण और सत्यापन को कार्य तेजी से जारी। लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचे। देहरादून में रसपना नदी का पुनरुत्थान और सफाई अभियान का तहत पिछला 3 महीना बटे नदी में लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाए गए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावतन जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन में जन सहयोग पर जोर दे। और हरिद्वार जिला में सरकार की योजनाओं को लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों को आयोजन करे जाणु छे। या के दगड़ी ही गढ़वली प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुननी सब श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत छू आपू सबे लोग न कार्यक्रम में। कार्यक्रम में रोजे के चार आप लोगों दगाड़ बातचीत करुल, आप लोगों के जानकारी दियुल और दगाड़ में आप लोगों को मनोरंजन ले करुल लोकगीतों दगाड़। श्रोताओं आज कार्यक्रम में सबू है पहली बात करनू तिमिल खेती के बारे में। श्रोताओं तिमिल जैके अंजीर ले कही जा पर्वतीय क्षेत्रों में यह खेतकरण एक भल विकल्प बढ़ सकूं। श्रोताओं यह के मुख्य रूपल खेतों मेड़ों पर उगाई जा। अगर बात करी जाओ तिमिल एक तो तिमिल औषधीय गुणों और बटी भरपूर हूँ और यह जो फल होनी उन्हों के लिए बहुत पौष्टिक मानी जा और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में यह एक फलों के खाण में इस्तेमाल करी जा। श्रोताओं यह एक पत्तों के लिए खूब इस्तेमाल हूँ किले कि यह बात तो हम सबे जानू कि चाहे कोई काम काज हो कोई ले पूज पाठ हो हर जाके तिमिलक पत्तों इस्तेमाल करी जा तो धार्मिक रूप ले तिमिलक बहुत महत्व छू। यह के अलावा श्रोताओं पशुओं के लिए चारक रूप में ले यह के इस्तेमाल करी जा और पशुओं के लिए यह के बहुत पौष्टिक मानी जा। तिमिल में फाइबर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होनी जो पाचन शक्ति के बढ़ोन में और इम्यूनिटी के बढ़ोन में ले मदद करनी। श्रोताओ

अब अगर बात करी जाओ यह खेती करण अखबार में, तो यो शीतोष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उगू। हमार उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में यह यो बहुत भली भा और आसानी उग जा, और ढलान वाले खेतों में या फिर मेड़ों में यो भली भा पनप ले जा। श्रोताओं ये कहें बहुत ज़्यादा पानी की और बहुत ज़्यादा देखभाल के लिए आवश्यकता नहीं हुई, तो यस में ये कहें बहुत आसानी उगाई जा सकूं। सामान्य पर्वतीय मठ और केवल प्राकृतिक दियो में यो उग जा, और केवल इतु के दियो पानी यक लीजिए पर्याप्त ले हूँ। यक लीजिए हमार किसान भाई बहनियों के ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़े, किले की बरसात नहीं हुई तो सिंचाई करने लीजिए उनके कतुक बार कतुक फसलों में समस्या आ जाए, तो ये में ये इसके दिक्कत नहीं हुई। सामान्य माट में सामान्य दियो में यह खेती आप लोग आसानी कर सकता। तो श्रोताओं तिमिले खेत कर बेर आप लोग आय अर्जन ले कर सकता, किले की यह प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में आजकल बहुत भल विकल्प ले बढ़न लाग रहो। तो आप लोग ये क्या अपन जानवरों के लिए इस्तेमाल तो कर छाई, तो ठुल मात्रा में उगबेर ले आसानी जानवरों के लिए पौष्टिक चारक रूप में ये इस्तेमाल करी जा सकूं। तो श्रोताओं बातचीत आप लोग उदगाड़ अघिल कले करते रूल, पहली आप लोगों को मनोरंजन करनू दीवान सिंह कनवालक गाई हुई यह लोकगीतक दगाड़।

0: श्रोताओं, दीवान सिंह कनवालक स्वर में आप लोगों सुनो यह कुमाऊनी लोकगीत। और आप कार्यक्रम में अखिल बर्णू और आप लोगों के सुनो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी कृषक नारायण दत्त सुयाल दगड़ करी हुई हमारी बातचीत। श्रोताओं, आज हमूल कार्यक्रम में शामिल कर रखो ग्राम सुयालगढ़ जिला नैनीतालक कृषक श्री नारायण दत्त सुयाल जी के। सुयाल जी, बहुत बहुत स्वागत छू अपन हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबू है, पहले तो आप यह बताओ कि आप के खेत पात कर था।
1: खेती पाती तो हम सब कुछ कर लो, खेत पात में हमारे दस की मान लगा है, आलू लगोनो, शिमला मिर्च लगोनो, टमाटर लगोनो और आज अपने गोभी लगे रहे और आलू खोद रहे। आप
0: अच्छा
1: खोजे?
0: अच्छा, तो आजकल आप आलू खेत है?
1: आलू खेत आलू खेत बाद हम फिर गोबले लगू लगे कुछ हम लगा रहे।
0: अच्छा, तो कब शहरे पे अलबेर अपन आलू खेत?
1: आलू खेत बहुत बढ़िया है, आलू में पैदावार जरा कम थी लेकिन आलू दूसरी साइज में सही थे। आलू दाम जैसे सही निकलनी, बढ़िया निकलेगी, मतलब 150-200 ग्राम तक निकलनी।
0: तो आप जो आपूल आलू खोद दी है ली वो आई तक आपूल बेची या आप बेच ला हूँ आलू के?
1: ना ना, वो आलू हम कुछ घर बना दिया ली।
0: अच्छा,
1: जाके जाके सब्जी जरूरत थी 20-25 किलो जाके एक आध क्विंटल, मतलब जो दुकानदार है तो क्विंटल ले लेंगे ना, एक क्विंटल तो हम कुछ आलू निकाल लेंगे और कुछ रह नहीं, कुछ सब्जी इस्तेमाल में ले लेंगे हम कुछ और जाना।
0: तो ये के अलावा पुल गुरबा छे पावरा सुनाल पे
1: गुरबा सहारा ही हो
0: तो दूध व्यवसाय ने आपको कर था?
1: दूध व्यवसाय करने पे दूध
0: ये के अलावा आप एल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए लाभ लेने लग रहे था? आप जरा विस्तार में हमको बताओ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आप कसी आवेदन करो और कसी आपको ये एक लाभ मिलो?
1: अब आवेदन के तरह अब तक किसान सम्मान निधि के आप कृषि खेती वालों हमारा लीजिए मांगो, हम फोटो मांगे आधार कार्ड मांगे तो फिर हम यहाँ पर अप्लाई करें और जाते जाते फिर हमें साल में 6,000 रुपए मिलने।
0: अच्छा, किसान सम्मान निधि जो धनराशि छू यो साल में एक बार मिले या फिर साल में 2 या 3 बार मिले?
1: 3 बार मिले।
0: एक साल में 3 बार?
1: एक साल में 3 बार।
0: तो ये सम्मान निधि को को फसलों के लिए दीजिए?
1: फसलों के लिए जैसे फसल में जैसे हमारे यहाँ फसल में लीजिए हमको उसे मान लिया जाए, अगर माना ओलावृष्टि है या अतिवृष्टि में ज्यादा हो जाए नुकसान है फसल में इसीलिए हम जब यहाँ पर दिनों पटवारी को इन्हें तब जाते हैं आगे के बढ़ोगे तो अलग ठीक थी लेकिन बहरहाल हमको तो लगभग सब चीज़ें भी मिल रहा है मिला में खेत में आप जब हमें धान से मधु से और क्या नाम गेहूँ गेहूँ से गेहूँ फसल से आलू फसल से टमाटर

0: जो नुकसान है तय हिसाब से उन्होंने हमारे लिए किसान सम्मान निधि जो बढ़ाई हुई थी फसल है वास्तविक बढ़ाई हुई थी मिलेगी।
1: अच्छा, तो जब आप किसान सम्मान निधि के लिए जी आवेदन करो, जो आवेदन प्रक्रिया थी आपको क्या लगो कि आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आवेदन प्रक्रिया बहुत कठिन जैसे लगी आपको, बहुत मुश्किल है आवेदन करण में?
0: ना ना, कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा काम है किसी में, अब पूरी पहचान पत्र वगैरह और ये अपने कार्ड थोड़े थोड़े कर दे, मतलब घर में कुछ लोग थे कैसे कैसे करके अपन मतलब कार्ड जल्दी से दे, क्या की APL वाले से या BPL वाले से या किसान में क्या करनी है, खेती को खेत करनी क्या करनी के लिए पैसा वाले के लिए उन्हें डिटेल दिए थी हम, कोई बहुत आसान मतलब उन्हें दिक्कत नहीं रह जाते।
1: तो जैसे अपन आवेदन करी बाद लगभग कतुक टाइम बाद अपन सम्मान निधि आपको खातों में उड़ शुरू है गई थी?
0: 6 महीना लगभग उड़ शुरू है गई।
1: अच्छा, तो यह के अलावा जैसे ये जो किसान सम्मान निधि धनराशि छू, यो लगातार आप लोगों के मतलब बखत बखत पर मिलते रहे, या फिर धनराशि मिलन मतलब कोई तरीके कोई समस्या आप देखी आज तक?
0: ना ना, कोई समस्या नहीं है, आते रहे तो हमारे मैसेज आना।
1: तो आपको क्या लागू की ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत हमारे केंद्र सरकार कर रखी, तो यह किसानों के एक तरीके मदद करने निधि कर रखी, आप जैसे एक लाभार्थी छा तो आपको क्या लागू कि ये अपन कतु मदद है रे?
0: हमें बहुत मदद मिले, के बीच बीच में दिक्कत आ गए उधर आप सम्मान निधि निकाल लो ना, अपन चाह पानी नमक घोल दे रहे।
1: खेती में आप यह धनराशि के इस्तेमाल कैसी कर था? खेती काम लीजिए, खेती में आप लोग बीज खाद या फिर खेतों के लीजिए दवाई वगैरह लीजिए, एक इस्तेमाल कैसी कर था?
0: मतलब हम अगर मान लिया जाए खेती में आदिम लोगों से, तो जैसे कि दस की हम आलू लगाई, हम आलू लगाई थी तो आलू लीजिए आदिम बोलो पड़ा, बीज काटना लीजिए आदिम बीज काटनी है, भूल गाज नहीं है, मजदूर लोगों ने पढ़ने लगा कच्चे कच्चे का कुछ आप लाज नहीं रहे उन्हें लाज नहीं रहे, तब जैसे तहसील तट हम करे तहसील हम तहसील निकाल लें।
1: तो ये के अलावा कृषि विभाग बटी आपो के कोई प्रकार एक मदद बखत बखत पर खेत बाड़ी के लिए भी मिलते रहे, ये एक बार में क्या बताओ?
0: कृषि विभाग बटी हम बोलो कृषि विभाग बटी आप जैसे हमारे कृषि विभाग में हम हॉर्टिकल्चर बटे जुड़ी रहो, हॉर्टिकल्चर बटी हम मान लिया जाए हमको कीटनाशक आजकल इसमें गुड में या मिर्च में ये टमाटर में क्या नाम है कीड़ लाग में ना, तो हम वहाँ बटी हॉर्टिकल्चर बटी ले लो हम हाफ रेट बटी हम मतलब सब्सिडी में दवाई पानी ले लो और क्या नाम बोले अगर मान लिया जाए खाद वाद डालने से तो खाद हम समिति में ले लेंगे हाफ रेट में हमको मतलब कृषि विभाग वाले।
1: बिल्कुल, तो ये के अलावा अब चौमासा दिन लगभग नजदीक आएगी, तो आप चौमास में आपको वहाँ किस तरीके खेत बाड़ी है क्या आप लोग पूछा है?
0: चौमासा खेत में हम क्या बोले अब बोल हम मधु बोल और क्या नाम बोले धान बोल धान भूल के मैं धान भोजा हली धान घोड़ा चल रहा, लेकिन अब जो हम जो अब समाज में करूँ एक एक मरुभूल घोट हट राजमा से क्या चीज भूल हमारे अब और भूमि के समाज से खेती कई है।
1: तो आप लोग जो ले आपको लेल फसलों के नाम बताएं जैसे राजमा या फिर भट वगैरह, तो ये आप लोग अपन इस्तेमाल कर तो पूछा या फिर आप लोग एक बेचने के लिए काम कर था?
0: तो अब होने से तो इस्तेमाल कर तो अगर कोई साल समय भरा आ गया तो इस्तेमाल हजार ओवर ले है बेचने है साल समय के भाग में साल समय सब ठीक है उसी बाहर, लेकिन अब यहाँ का सुंदर रात के दौर चल गई सुंदर खा जा भट हो गई दिन में घर गाना रह गई आप बगाई गेहूँ चश्मे
1: यानी कि जब जो साल जिस हिसाब अपन फसल है वही हिसाब अपन बेचण या फिर नहीं बेचण वही हिसाब कर छा
0: हिसाब करना अगर बढ़ गया उसमें खराब ओवर है तो निकाल दी 20 किलो कुछ खर्च करवा लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: और कम है फिर कभी कभी स्थिति ऐसी बाजार में लगा दीजिए वहाँ पर।
1: तो ये के अलावा जैसे आप तो केंद्र सरकार की योजना जुड़ी हुई छा ये लाभ लेने लग रहा था, तो आपको के लागू की भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में या जो ले योजना चलाई जा रही है किसानों के कसी मदद करने लग रही कतु गुण लीजिए उपयोगी है ये एक बार में आपको के कौन चला?
0: अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत नहीं थे लोग आराम है कई चीजें और अब देखो आप 10 की मान लिया जाए किसान सम्मान चीज लगाया ला रहे बाकी मुर्गी की लगभग लगभग लगाई रहे वो लोग टाइम पर काम करने लग रहे लोग और दिव्यांग जैसे उन्हें मिलने ला रहे सब ठीक है बढ़िया है लोगों का समय समय पर काम चलना तो सामना है जनाम मतलब है जनाम सब मिलेगी।
1: बिल्कुल, यानी कि सरकार द्वारा चलाई हुई जो योजना है उन्होंने आपको बहुत संतुष्ट था?
0: संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट।

0: આપો હમર દગડ કાર્યક્રમ મેં જુડ છા ઓર આપે હમર દગડ યો બાતચીત કરી એટલે ભી આપણ બહોત બહોત ધન્યવાદ।
1: श्रोताओ आप लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी कृषक नारायण दत्त सुयाल दगड़ करी हुई हमारी बातचीत। और श्रोताओ कार्यक्रम में आप अगिल बात करनू हल्द और अदरक के खेती के बारे में। श्रोताओ हल्द और अदरक हमार रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी छू और हम बटी लगभग हर एक मन की हर दिन हल्द और अदरक इस्तेमाल जरूर करूँ किले की द्वे जो फसल छे या जो द्वे मसालियों छे यो हर तरीके हमर लीजी बहुत उपयोगी छे। यो औषधीय गुणों बटीले भरपूर छे और मसाला के रूप में ले हम इनके इस्तेमाल करनू तो हमर दैनिक जीवन में यो द्विने चीज बहुत गहराई हमर दगड़ शामिल छे। और श्रोताओ हमारा बहुत से किसान भाई बहनी अब हल्द और अदरक के खेत कर बेर ले अपन लीजी भल मुनाफ कमोण लाग रही। तो यह द्विने फसल गर्मक मौसम में भल उपज देनी और श्रोताओ इनर वृद्धि के लीजिए हल्क दियो के भल मानी जा। यह के अलावा अगर बात करी जाओ कि हल्द और अदरक के कस टाइप ऑफ माट से तो यह द्विने के लीजिए बलुई दोमट माट बहुत उपयुक्त हूँ। यह के अलावा खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भल हूँ चें किले की ज़्यादा नमी होने पर यह जो कंद होनी यानी कि एक जो बीज होनी ऊ सड़ जानी तो यस में खेत यस हो चें जनू में जल निकासी की व्यवस्था भल छू। और यह के अलावा श्रोताओं एक बीजों के बूण है बेर पहली भली भाग खेतों 3-4 बार जुताई कर लेनी चें और वीक बाद 4/5 सेंटीमीटर गहराई में इनर कंदू के यानी कि इनर बीजों के बो लेनी चें। और हल्द और अदरक के खेतों मेड़ों पर यानी कि तिराव निसाव ले लगूण भल मानी जा। और यह के अलावा श्रोताओ एक सबू है जरूरी ध्यान देने वाली बात जो छू कि बहुत बार हमार किसान भैवणी एक के खेत में लगातार एक बार फसल लिबेर दोबारा फिर हल्द और अदरक उगे लेनी फिर तीसरी बार फिर उई फसल लेनी तो यस नहीं करण चें कभेले किले की लगातार एक के फसल खेतों में उगुणल एक तो माट में मौजूद पोषक तत्व खत्म है जानी और जो एक फसल हम लगातार उगुनू वीक लीजी जो बीमारी होनी वीक जो बीमारी होनी या वीक खराब करनी वाल जो सूक्ष्म जीव होनी जो जीवाणु होनी उन लगातार उ माट में मौजूद रहनी जैल की हर फसल लगातार खराब है जें तो यस में हम के फसल चक्र के अपनोण पर विशेष ध्यान देने चें। तो अगर एक बार हल्द और अदरक के खेत कर हली तो यह कोशिश करण चें कि अगिल खेत को दूसर फसल एक लेने चें ताकि माट में मौजूद जो पोषक तत्व छें उनर संतुलन बढ़ी रहो और कोई एक बीमारी कोई एक फसल एक बीमारी या कोई एक फसल में लगने वाले जीवाणु उ माट में मौजूद नहीं रहो। तो फसल चक्र के अपने बेर यह खेत के कारण चें और फसल चक्र तो श्रोताओं हम आप लोगों के लगातार बताते ले रुनू और हमार विषय विशेषज्ञ ले यह बात बतूनी कि फसल चक्र अपनोण बहुत आवश्यक छू किले की यह माटक सेहतक लीजी ले जरूरी छू और फसलों उत्पादनक लीजी ले जरूरी छू। तो श्रोताओं हम तो यही उम्मीद करनू कि आप लोगों के हमार दी हुई यह जानकारी भल लागन होनल और आप लोगों की मदद ल हुन होनेल आप लोगों के यह नन्नन जानकारी अपन खेती बाड़ी में सहायक हुन होनल तो आप लोग यह नन्नन बातों के ध्यान में धरिया और ताकि आप लोगों खेतों में फसलों उत्पादन भल हो।

श्रोताओं, प्रहलाद सिंह मेहरा गई योई कुमाऊनी लोकगीतक दगड़ आज ग्राम जगत कार्यक्रम इत्तिक संपन्न करणे नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों नक दगड़ में श्याम भट्ट। पहली मुख्य समाचार, राज्य में SIR अभियानक अंतर्गत गणना प्रपत्रों के बाणन और सत्यापनक काम तेजील चल्योक्ष, लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पुज्यान। देहरादून में रिस्पना नदी पुनरुद्धार और सफाई अभियानक अंतर्गत पिछले 3 महीने में नदी बठी लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ हटाई गो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पानी संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जन सहयोग पर जोर देश, और हरिद्वार जिले में सरकारी की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन करी जन लग रहा। अब समाचार विस्तार। उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियानक अंतर्गत गणना प्रपत्रों के बाणन और सत्यापनक काम तेजील चल रहा। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडेल बतास की SIR के अंतर्गत मतदाता सूची के ज्यादा सही बनोने के लिए घर घर जावेर गणना प्रपत्र बांटने का काम करी जन्नो। डॉक्टर जोगदंडेल बतास की आज तक राज्य के लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पुजाई जा रहे हैं। 6 जिलों में प्रपत्र बांटने का काम 99% तक पूरा गोच, वहीं और जिलों में ले अभियान तेजील चल रहा और अगले 1-2 दिनों में बांटने का काम पूरा कर लिया जा रहा।
2: तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल है। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमेरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गन्ना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गन्ना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे उन सभी गन्ना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको BLO ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
1: डॉक्टर जोगदंडेल कौश की मतदाताओं बठी मिल्या प्रपत्रों का सत्यापन करवेर उनके निर्धारित पोर्टल में अपलोड करी जाल, जैल मतदाता सूची में कोई भी प्रकार की गलती या फिर असमानता के दूर करी जा सको। उन्होंने सब मतदाताओं थे बखत में अपन गणना प्रपत्र भर बेर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों के उपलब्ध करने की अपील करी। यही बीच चमोली जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत 3 मतदान केंद्रों में गणना प्रपत्रों का 100% वितरण और डिजिटाइजेशन काम केवल 8 दिन में पूरा कर ली जा रहा। जिला प्रशासन एक जन सहयोग

0: लोक और बीएलओक मेहनतक परिणाम बतास। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार बतास की मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बूथ लेवल अधिकारियों की मेहनतल यो उपलब्धि हासिल है। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथक बूथ संख्या 133 झींझी और 138 पाणा और विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयागक बूथ संख्या 38 कोली में गणना प्रपत्रों के बाणन और डिजिटाइजेशन 100% पूर्ण कर ली जा रहा। जिलाधिकारी संबंधित बीएलओ और सहयोग करने वाले मतदाताओं के बधाई देते हुए कोष की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सही और बिना गलतियों के मतदाता सूची तैयार करने का महत्वपूर्ण प्रयास छे। उन्होंने सभी मतदाताओं थे सहयोग बनाई रखन और अन्य बीएलओ के लिए अभियान में तेजी लोनक निर्देश दियान। देहरादून में रिस्पना नदी पुनरुद्धार और सफाई अभियान के जिला प्रशासन और नगर निगम तेज करा ली। मानसून है पहली नदी का साफ और अविरल बनोनक लीजिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाई जन लग रहा। यही का देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज महापौर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे दगड़ राजीव नगर क्षेत्र में रिस्पना नदी में चल्यक सफाई कामों का निरीक्षण करी। उन्होंने मौके पर सफाई अभियान प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी कौश की मानसून है पहली रिस्पना नदी व्यापक सफाई प्रशासनिक प्राथमिकता से जैल पैनिक निकासी व्यवस्था सुचारू बन रो और नदी संरक्षण प्रयासों का मजबूती मिलो।
1: संबंध में हमारा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान्स बनेंगे कि विजिबल चेंजेस कौन कौन से लाए जाने हैं। मानसून से पहले के जो हमारी प्री मानसून तैयारियां हैं उसमें हमारे 12 से 15 जो ब्रिजेज हैं वो पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें फंड्स दे दिए। सिमिलरली इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी फंड्स दिए गए ताकि रिवर के चैनलाइजेशन के वर्क को करके मिटिगेशन किया जा सके। और अभी जो नगर निगम के एफर्ट्स हैं वो भी इसी लाइन पे हैं कि बिफोर मानसून हम बस्तियों को और अपने लो लाइंग एरियाज को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं और कैसे गार्बेज जो अंदर पड़ा हुआ है उसे निकाल के रिवर को क्लीन कर पाते हैं।
0: ध्यान देने वाली बात है कि नगर निगम द्वारा रिस्पना के साफ बनुनक लीजिए मार्चक महन बैठे विशेष स्वच्छता अभियान चलाई जन्नो जैक अंतर्गत आई तक लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ हटाई जा रो। प्रशासन ने स्पष्ट करी कि नदी का कूड़ा घर न बनने दी जा और नदी में छूटने वाले अन उपचारित नावों को उपचारक दिशा में ले प्रभावी कार्रवाई करी जा।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास खंड पाबो खुंडेश्वर मैदान में आज जिला स्तरीय जल उत्सव 2026 का शुभारंभ करीगो। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी सारा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल करी। यह अवसर पर डॉक्टर रावतल कौश की पानी संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका छे। उन्होंने कौश की राज्यक पारंपरिक जल स्रोत नदी गाढ़ गधर नौल और धार राज्यक अमूल्य प्राकृतिक संपदा छन जनोक संरक्षण बखतक मांग छे। उन्होंने कौश की बदलने जलवायु परिस्थितियों और बढ़ने जल आवश्यकताओं का देखते हुए जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं में काम करने लग रहे हैं। दगड़ स्थानीय समुदायों महिला समूह और युवाओं की सहभागिता ले इन प्रयासों के और ज्यादा प्रभावी बनाई जा सकती। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लोगों थे साफ सफाई बनाई रखन और ज्यादा से ज्यादा डाउबोट लगाबेर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिनक आह्वान करी। हरिद्वार जिले में केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पूजनक उद्देश्य आज बैठे जन कल्याणकारी शिविर आयोजित करी जन्यान जन 20 जून तक चलाई जाल। इन शिविरों में अलग अलग विभागों की सेवा और योजनाओं की जानकारी एक जग में मिल सके। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित संबंधित अधिकारियों के शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कौश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों की ठुल मात्रा में प्रचार प्रसार कर बेर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करी जाए। शिविरों में अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल लगाई जाए जहाँ अलग अलग सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करी जाए उनके योजनाओं का लाभ ले दिए जाए। जिलाधिकारी अधिकारियों के लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने और शिविरों की प्रगति की नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करने का निर्देश ले दिरख्यान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है पानी नैनीताल और चमोली जिले में योग के लिए उत्साह देखने का मिलना। आयुष विभाग द्वारा द्वीय जिलों में रन फॉर योगा कार्यक्रम आयोजित करी जान जनमें स्कूली नानतिनोल युवाओं बुजुर्गों शैनियों और एनसीसी कैडेट दगड़ आम नागरिकों बढ़ चढ़ भाग ले। नैनीताल मिली स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रमक शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहन पाठकल हरी झंडी दिखाभेर करी। वहीं चमोली स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़क शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारल करी। यह अवसर पर स्कूली नंतिनोल योग प्रदर्शन ले करी और प्रतिभागियों योगक लीजिए जागरूकता और फिट इंडिया संदेश दे।
3: हम योगा दिवस के लिए यहाँ से दौड़े थे और यहाँ से हम तिकोनिया तक दौड़े थे और फिर हमें प्राइज भी मिले। हम ये संकेत दे रहे थे कि योगा फिटनेस हमें करना चाहिए, फिट रहना चाहिए अपनी बॉडी में।
4: आज हम यहाँ दौड़े योग दिवस पर। योगा हम सबको करना चाहिए। स्टेडियम की तरफ से तिकोनिया तक लेके गए, इसमें हमने रनिंग करी और योग सबको करना चाहिए। आपका बॉडी फिट रहती है, स्वस्थ रहती है।
0: ध्यान देने वाले बात की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य अलग अलग जगहों में कार्यक्रम आयोजित करी जनियान। एक द्वारा लोगों के ज्यादा है ज्यादा संख्या में योग से जुड़ने की अपील करी जन लग रहे हैं। कर्णप्रयाग में भी श्रद्धालुओं के एक समूह और स्थानीय लोगों के बीच भाई झड़पक बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गोविंद घाटक तरफ बैठे तीर्थयात्रियों से आपसी सद्भाव अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील करी गई। ट्रस्ट तरफ बैठे सब श्रद्धालुओं से यात्रा के महत्व और उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए श्रद्धा और मर्यादा दगड़ यात्रा करने के कई जा रो दगड़ या इस प्रकार कोयले काम करने है बचने का आह्वान करी जा रो। जेल धार्मिक मर्यादाओं का ठेस पूजो यात्रा के दौरान वाद विवाद है बचने और कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के सहयोगक लिजिले कई जा रो। अपील में सिख श्रद्धालुओं से योले कही जा रो कि उन यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप शस्त्र साथ में न लो। राज्य के अलग अलग जगहों में भाव बैठे एक बार फिर मौसम का स्वभाव बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार भाव राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज आंधी और बरखा की संभावना है। शुक्रवार के उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरगढ़ में गरज और आंधी दगड़ डावले पड़ सकती। यही बीच राज्य के मैदानी क्षेत्र में तापमान सामान्य है ज्यादा बनने को और अगले 2 दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी है सकती। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के बणन और सत्यापन का काम तेजील चल्योग से लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पुज्जान। देहरादून में रिस्पना नदी पुनरुद्धार और सफाई अभियान के अंतर्गत पिछले 3 महीने में नदी बठी लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ हटाई गो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पानी संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जन सहयोग पर ध्यान जोर दे और हरिद्वार जिले में सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन करी जन लग रहा। एक अदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त भय। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं दबंग 2 फिल्म से। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ें हैं। इरफान कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुने ओम शांति ओम फिल्म से के की आवाज़ में। विशाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का गीत उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं, संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक गाथा भनारी नेत। कलाकार हैं राम सिंह राणा और रमेश जोशी।

पाके की कथा लाग रही जाए तो मेरी बलै लोन जनता सुन लिए काय भर पैक जन्मी देश में काय पिथी पहलवान जन्मी धनी देवता।

पनी मन हमर बेर स्वर्ग बैकुंड है जाचो नामे नाम मर्ज भूलू यश भर पैग नुक नाम जो जी अमर है रह गयो तो भला ना दिजा तब नश की आदर में गोजू अब हाजड़ बेरी जा जय जो लगन लाग रहा

दक्षिण पटांग में भैज्य रघु जय जा बणी टुकड़ी दरद न लागो जणी पूछो पालन क्यू कह दो करुची जा पैगो बंसी क्यू जवाब

आईटी लॉट के सेट कोटा को पाटून सही जा तो भगा धन्य जो सेट को बैठा कालू में टंकी रहती बड़की पता रे भगा गई है बैठ बैठ सेट वा

पगुर है जोन पूछा तो भगा तो नैन जो थी बड़ी दुपट में से तो अपन फिर जब शिकार हूँ पूछा एक मंगलुआ नामक ग्वाल से जगू तो मुख से बुला जू पुतम पलाखण जाग रहे मंगलुआ तेरे बला जोनू तू जाते पूछी नर मैं थोड़ा जिस जाते थे नर मैं तिथे कटे बिरयानी भरू नर बोझ थे कटे।

不出来的。अफगानिस्तान के कसूर कर्जा क्या पहला बरात कर्जा निर्जल भगा जो सी किले बेजात कालू में साकिन जो धनी देता ते बोल नहीं जा बोल गुस्सा गो आजाद नहीं।

अमर से कौन लारो इर जरूर के कसूर का नेलो तब बैठ रात तालू में कहीं ढेली तब ऐसी पाला झोल

देखे मंगलुआ गोला जो से भुलू चैत गोद में आगो तब बैठात का लुंग बजी भगा पुछन लाग रहा।

भगा चर बोझ गए दीदी चर हाल कह जी मैंने चर दूह कह जू तब चेर मोह कर दे चर बोझू रे क्या बुझे जो जरा भाई जो जी बना धीरे शिकार जा रो जी मोहरी जो जी घर जो नार बड़ो ला रहे नियो ना।

भगत मैं जा मरी मैग जब चल हला तुम अपन चैत कोट में रया तय भगत मैं भलारी मैं न जा अपने घर वाली गुना मेरी जा बुला मस्तर जो की बाट कह चार ले

बात नहीं जा मरी मैं भी जब चल हला तुम अपन चैत कोट में रया ते बहुत में भलारी मन है जा अपन घर होनी गुना मेरी जा बुला मस्तर जो बाट कह चार नेली।

अभी आप सुन रहे थे लोक गाथा भनारी नैद का दूसरा भाग। कलाकार थे राम सिंह राणा और रमेश जोशी। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी। दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना DR कांगो से होगा। अन्य मुकाबलों में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया, नॉर्वे ने इराक और फ्रांस ने सेनेगल को हराया। मकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशारानी बरुआ, थारुन मनेपल्ली और अनमोल खरब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। FIH हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला टीम कल आखिरी लीग मैच में उरुग्वे से मुकाबला करेगी। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन साइकिलिंग बाय द सी का नेतृत्व किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व कप के अहम मुकाबले से, जहां भारत और नीदरलैंड्स प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 190 रन बना लिए हैं। स्मृति मांदना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। इससे पहले नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस वक्त ऋचा घोष 8 गेंद पर 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और कप्तान हरमनप्रीत कौर 5 गेंद पर 4 रन बनाकर अभी भी खेल रही हैं, बल्लेबाजी कर रही हैं। भारत ने इससे पहले विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। और अब बात कर लेते हैं मेंस क्रिकेट की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 35वें ओवर में 7 विकेट पर 194 रन बनाए। इससे पहले कप्तान शुभमन गिल ने 110 गेंद पर 154 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं ईशान किशन ने 89 गेंद पर 125 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 48 रन का योगदान दिया। नांगयाल खरोटी ने सर्वाधिक 4 और राशिद खान ने 3 विकेट अपने नाम किए। अभी रहमत शाह 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अब बात जूनियर टीम की। भारत ए ने आज दांबुला में अफगानिस्तान ए को 101 रन के बड़े अंतर से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत बेहतरीन रही। पहले विकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने 75

0: रन की साझेदारी की। वैभव ने 38 और प्रियांश ने 58 रन बनाए। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने 59 और कुमार कुशार्ग ने 58 रन की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 रन का योगदान दिया। लोअर ऑर्डर में निशांत सिद्धू के 21 और विपराज निगम के 30 रन के सहारे भारत ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर 319 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 218 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। बाहिर शाह ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। निशांत सिद्धू ने सर्वाधिक 4 और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए फाइनल में पहुंच गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फीफा फुटबॉल विश्व कप के महामुकाबलों की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में आज पुर्तगाल का सामना डीआर कांगो से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं अन्य मुकाबलों में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को, नॉर्वे ने इराक को और फ्रांस ने सेनेगल को हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता में 28 साल में अपना पहला मैच खेलने उतरी ऑस्ट्रिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन को रोमांचक मुकाबले में 3-1 से हराया। ऑस्ट्रिया ने 20वें मिनट में मैच का पहला गोल करके बढ़त हासिल कर ली। रोमानो श्मिट ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम को आगे कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही अली ओलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रियाई डिफेंडरों को छकाते हुए बेहतरीन गोल किया। ओलवान वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जॉर्डन के पहले खिलाड़ी बने। इस गोल से स्कोर 1-1 हो गया। इसके बाद जॉर्डन के डिफेंडर याजान अल अरब ने दुर्भाग्यवश अपने ही गोल पोस्ट में हेडर मार दिया, जिससे ऑस्ट्रिया 2-1 से आगे हो गया। अनुभवी स्ट्राइकर मार्को अर्नोटोविक ने कोई गलती नहीं की और पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम की 3-1 से जीत सुनिश्चित कर दी। ग्रुप जे के मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया। टीम की इस जीत के नायक रहे कप्तान लियोनेल मेसी। डिफेंडिंग चैंपियन के स्ट्राइकर्स ने अल्जीरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और टीम को पहली सफलता मैच के 17वें मिनट में मिली। कप्तान मेसी ने बॉक्स के बाहर से ही बेहतरीन शूट लिया, जो अल्जीरिया के गोलकीपर लुका जिदान को छकाते हुए गोल पोस्ट में पहुंच गया। दूसरे हाफ में लियोनेल मेसी ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए 60वें मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना की बढ़त को दोगुना कर दिया। 16 मिनट बाद मेसी ने इस मुकाबले में गोल की हैट्रिक पूरी की। मेसी ने 3 गोल दागते हुए अपने 200वें इंटरनेशनल मुकाबले को यादगार बनाया। इसके साथ ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल की बराबरी कर ली। ग्रुप आई के मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। नॉर्वे की ओर से फीफा विश्व कप में अपना डेब्यू कर रहे एर्लिंग हॉलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए, जबकि लियो ऑस्टीगार्ड ने भी 1 गोल दागा। 14वें मिनट में गोलकीपर ओरजान नाइलैंड की शुरुआत किए गए मूव पर डेविड मोलर वोल्फ ने बाएं छोर से शानदार क्रॉस दिया, जिसे हॉलैंड ने गोल में बदलकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन इराक ने मैच में जल्द ही वापसी की और 10 मिनट बाद ही इस टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा। हाफ टाइम से पहले हॉलैंड ने अपना दूसरा गोल किया और नॉर्वे को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में आए लियो ऑस्टीगार्ड ने कॉर्नर किक पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद नॉर्वे ने एक और गोल करके मुकाबले को 4-1 से अपने नाम कर लिया। वहीं फ्रांस ने रोमांचक मुकाबले में सेनेगल को 3-1 से मात दी। टीम की इस जीत के हीरो काइलियन एम्बाप्पे रहे, जिन्होंने मैच में 2 गोल दागे। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ में एम्बाप्पे ने गोल करके फ्रांस को मैच में 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच के 82वें मिनट में फ्रांस के लिए सब्स्टिट्यूट ब्रेडली बारकोला ने एड्रियन रेबियोट से मिले पास को गोल पोस्ट में पहुंचाकर फ्रांस को 2-0 से आगे कर दिया। स्टॉपेज टाइम में इब्राहिम एम्बाय का शॉट डिफ्लेक्ट होकर गोल पोस्ट में पहुंचा और स्कोर 2-1 हो गया। इस गोल के बाद ऐसा लगा कि सेनेगल की टीम मैच में वापसी कर लेगी। हालांकि एम्बाप्पे ने एक शानदार लॉन्ग रेंज स्ट्राइक से गोल करते हुए फ्रांस को मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिला दी और फिर 3-1 के स्कोर से मुकाबले को जीत लिया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो रोमांचक फीफा फुटबॉल विश्व कप में हर एक मुकाबला एक नई दास्तां लिख रहा है। और अब बात हॉकी की। हॉकी नेशंस कप की, जहां अब भारतीय महिला टीम ने पहले ही टॉप चार में जगह पक्की कर ली है। एफआईएच हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम कल आखिरी लीग मैच में उरुग्वे से मुकाबला करेगी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: भारतीय टीम पूल ए में 2 मैचों में 6 अंक के साथ शीर्ष पर है और अंतिम चार में पहुंच चुकी है। भारत ने अमेरिका को 3-2 और जापान को 2-1 से हराया। एफआईएच प्रो लीग के अगले सत्र में जगह बनाने के लिए भारत को नेशंस कप हर हाल में जीतना है। पिछले साल भारतीय टीम प्रो लीग से बाहर होने के कारण एफआईएच नेशंस कप में आ गई थी। पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ 10 अंक लेकर भारत प्रो लीग में आखिरी स्थान पर रहा था। 8 देशों के एफआईएच नेशंस कप की विजेता टीम अगले साल प्रो लीग में जगह बनाएगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज भारत का पलड़ा 17वीं रैंकिंग वाले उरुग्वे पर भारी होगा, जिसे पहले दोनों मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा है। भारत ने 2 मैचों में 5 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। दीपिका 2 गोल कर चुकी है, जबकि नवनीत कौर, सलीमा टेटे और लाल रिमसियामी ने 1-1 गोल किया है। भारत के कोच शोड मारिन को अपने सभी स्ट्राइकर से मैदानी गोल की उम्मीद होगी और यह मैच अच्छा अवसर है। इस साल होने वाले विश्व कप और एशियाई खेलों को देखते हुए कोच नया संयोजन भी आजमाना चाहेंगे। 2 मैचों में 3 गोल गवा चुके भारतीय डिफेंस को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुक कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशा रानी बरुआ, थारून मनेपल्ली और अनमोल खरब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में ईशा ने यू हुंग को 21-16, 19-21, 21-14 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसी वर्ग के सिंगल्स में अनमोल खरब ने इंडोनेशिया की मुतियारा आयु पुष्पिता सारी को महज 42 मिनट में 21-13, 21-16 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं पुरुष सिंगल्स में थारून मनेपल्ली ने अपने ही देश के आर संजीवी को 15-21, 21-17, 21-14 से मात दी। आर चौहान ने भी वू जे यिंग को 18-21, 21-15, 21-19 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब बात पिकल बॉल पर। इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने आगामी पिकल बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन ने हाल ही में 12 से 14 जून तक अहमदाबाद में हुए आधिकारिक चयन प्रक्रिया के बाद यह फैसला लिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने बेहद प्रतियोगी चयन प्रक्रिया के बाद युवा पिकल बॉल और जूनियर वर्ग में भारतीय टीम की घोषणा की है। युवा वर्ग में 14 और उससे कम तथा जूनियर वर्ग में 18 और उससे कम आयु के खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। अर्जुन सिंह अंडर 18 श्रेणी में विजेता रहे। उन्होंने जूनियर पिकल बॉल चैंपियनशिप में सिंगल्स, पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स जीते। उन्होंने अपने भाई आदित्य सिंह के साथ पुरुष डबल्स और नाओमी अमल सदीवाला के साथ मिक्स डबल्स जीता। दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिली है। अर्जुन और आदित्य सिंह ने इस साल की शुरुआत में डबल श्रेणी में अमरीकी ओपन भी जीता था। टीम में देवशाह, पूर्वांश पटेल, विवान पटेल, आश्रिता राजू और दिया मट्टीपति शामिल हैं। वहीं अंडर 14 में भारतीय टीम का नेतृत्व वीर शाह कर रहे हैं। टीम में विरांश चोपड़ा, आरएन बल्लानी, माहिका राठौड़, मानसी कार्तिक और आश्रिता एस शामिल हैं। कप्तान वीर शाह ने अहमदाबाद में हुई जूनियर पिकल बॉल चैंपियनशिप में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 14 श्रेणी में सिंगल्स, पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स का खिताब जीता। आरएन बल्लानी ने अंडर 12 श्रेणी में जीत हासिल की और अंडर 14 लड़कों के डबल्स में रजत पदक जीता। माहिका राठौड़ ने डबल्स श्रेणी में अपनी क्षमता दिखाई और मानसी कार्तिक डबल्स तथा वीर शाह मिक्स डबल्स जीते। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फिट इंडिया साइक्लोथॉन पर। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज मुंबई के वर्ली तटीय साइकिल ट्रैक पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन साइकिलिंग बाय द सी का नेतृत्व किया। ये साइक्लोथॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के माध्यम से एक फिट, स्वस्थ और सक्रिय देश बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। डॉक्टर मांडविया ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई और साइकिल रैली में हिस्सा लेने वालों के साथ शामिल हुए। साइकिलिंग के महत्व पर बल देते

0: हुए श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग को परिवहन के माध्यम तरीके के तौर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। साइकिलिंग न सिर्फ निजी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण और ऊर्जा का संरक्षण करने में भी मदद करती है।
1: इस साइकिलिंग एक ऐसा निशाना है, साइकिलिंग फिटनेस का मंत्र है, साइकिलिंग पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिलिंग फ्यूल बचाता है यानी कि देश का उद्यम बचाता है और साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान करता है। एक ही साइकिलिंग से चार समाधान मिलता है।
0: डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एक फिट नागरिक स्वस्थ समाज में योगदान देता है।
1: हम सब लोग अपने घर से अपना कामकाज का स्थान दूर न हो तो साइकिल लेके जाए। हम महिला है, सब्जी मंडी जाना है, साइकिल लेके जाए। हमारा छोटा छोटा प्रयास देश को बहुत मदद कर सकता है। वर्तमान समय में फ्यूल क्राइसिस है, ऐसी स्थिति में वेस्ट हिस्से डिस्टर्बेंस है, ऐसी स्थिति में हम सब लोग साइकिलिंग करके भी देश को उपयोगी हो सकते हैं।
0: और अब रुख कर लेते हैं विश्व कप की ओर। श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है।

0: वर्तमान समय में फ्यूल क्राइसिस है, ऐसी स्थिति में वेस्ट हिल्स से डिस्टर्बेंस है, ऐसी स्थिति में हम सब लोग साइकिल करके भी देश को उपयोगी हो सकते हैं।
1: और अब रुख कर लेते हैं विश्व कप की ओर। श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने की दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: पेरिस में विवाटेक 2026 में

भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को

0: सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष

इंद्रधनुष कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कटिल पतंग फिल्म के गीत से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। अनंत बख्शी के लिखे गीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, आराधना फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

इंद्रधनुष कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ही घर फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: फिर वही रात है।
1: किशोर कुमार के गायक घर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हों, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, DRDO का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने की बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है, उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक

0: स्पेसिफिक इसने बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, तो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा। और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है। प्राइवेट प्रोडक्शन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनी को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए तो जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट टू मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दिस इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए, ये नहीं

0: होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आप मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहाँ के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ जैसे आप कह रहे हैं, वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टेल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसमें अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज ड्रोन यानी UAV, बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और

0: नई पहल बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहाँ खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
1: देखिए, ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है। हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पर पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को चुनके नहीं दे वो गिराया, जो वो

0: बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते हैं। ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें, स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक, जैसे बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस तो चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इस आत्मनिर्भरता वो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस मापे का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 degrees भी है +50 degrees भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस करेगी वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAVs को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए। और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहाँ 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI हैं वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, वो जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सब कुछ।

0: छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन जीडीपी वाला अगर 22 ट्रिलियन डॉलर का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है यह हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि तो मधुमक्खी के चक्के में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है बिंदा गई उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। तो आज देखिएगा तो कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं, हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अपने यूएवी हैं, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर हैं, चाहे अपने लाइट टैंक्स हैं, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस हैं, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स हैं, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं विश्व में जाकर के, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक यूएस के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरान नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000

0: आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज करने दें। 30 साल लग गए जी, 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर। आप खुद ही टीचर हो तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी, बिल्कुल लगते हैं। तेजस को 33 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं। परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं इतने। हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री हैं। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रांग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम। नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई। रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हुए, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियाँ, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: FM 106.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए नुसरत फतेह अली खान और मुजाहिद मुबारक अली खान की गाई ये कव्वाली।

नुसरत फ़तेह अली ख़ान और मुजाहिद मुबारक अली ख़ान की गाई इस कव्वाली के बाद आइए सुनते हैं मुन्नी बेगम की आवाज़ में ये नगमा।

बेगम अख्तर की गाई सी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 16.8 MHz पर आकाशवाणी।

कहानी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आंखें फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

0: कभी कभी।
1: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ओपी नायर ने।

सेहरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मधुमती फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं FM 100.8 MHz पर। कार्यक्रम का अगला नगमा लीजिए सुने, बाबल फिल्म से तलत मोहम्मद और शमशाद बेगम की आवाज़ें हैं। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नौसाद ने।

फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुने आह फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईएमए में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

0: के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।